सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। सवेरे के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता

0: के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

तू ही मालिक है इस कायनात का, तेरे दम से उचियारा हर बात का, तेरी रहमत से चलती है ये दुनिया, तू ही सहारा है जज्बात का।

तेरा नाम दिल का सुकून है, तू ही इबादत तू ही हासिल, झुक जाएं सजदे में ये आंखें, तू ही साहिब तू ही मालिक।

श्रोताओं, आज वंदना में ये भावांजलि थी। रविंद्र जैन, तालिब हुसैन, आशा भोसले और साथियों के स्वर में आज की वंदना अब संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: स्त्री और पुरुष संसार की गाड़ी के दो पहिए हैं। संसार में सब काम दोनों को मिलकर करने चाहिए। विद्या प्राप्त करनी हो, धर्म का आचरण करना हो, यात्रा करनी हो, गांव का काम करना हो, तो स्त्री और पुरुष मिलकर ही करें। गांव वालों को हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। हाथ की 5 उंगलियां समान थोड़ी ही हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना होता है तब 5 इकट्ठी होकर उठाती हैं। हैं तो 5 लेकिन हजारों काम कर लेती हैं, क्योंकि उनमें एक है। उनमें अगर आपस में झगड़ा चलता तो कुछ काम ही नहीं हो पाता। हमारे यहां कहावत है ना, 5 बोले परमेश्वर। गांव के 5 लोग जब हमराय होकर बोलते हैं तब वो परमेश्वर ही बोलता है, लेकिन 5 में से 3 एक बात कहें और 2 दूसरी बात कहें तो वो परमेश्वर की वाणी नहीं बनती। इसलिए अगर गांव का भला चाहते हैं तो सब मिलजुल कर काम करेंगे। पहले यह बात पक्की कर लीजिए। भगवान का भजन करने का हर एक का तरीका अलग अलग है और हर एक के तरीके में कुछ खूबियां भी हैं। जब ये सब गांव में अपने अपने तरीके से भजन करते हैं और प्रेम से रहते हैं तब बड़ा आनंद आता है। सितार में 7 सुर अलग अलग होते हैं, लेकिन 7 के मिलने पर सुंदर संगीत बन जाता है। एक ही सुर रहता तो उस सितार को सुनने में क्या आनंद आता। हिंदुओं में भी देखो ना, विष्णु की पूजा, शंकर की पूजा, गणपति की पूजा, देवी की पूजा आदि कितने ही देवताओं की पूजा चलती है। लोग कहते हैं ये क्या देवों का बाजार लगा दिया। मैं कहता हूं रुचि अलग अलग है तो बाजार भी होना चाहिए। भोजन में रोज रोटी ही मिलती रहने पर कोई दूसरी चीज खाने की आपको इच्छा होती है या नहीं। उसी तरह अगर अलग अलग नामों से परमेश्वर की पूजा चली तो गांव वालों का उतना ही आनंद बढ़ गया समझो। परमेश्वर के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। किसी के 4 लड़के होते हैं तो 4 के नाम भी अलग अलग रखे जाते हैं। वैसे भगवान के एक रूप का नाम है विष्णु और एक का नाम है कृष्ण, तो कोई विष्णु का नाम लेगा कोई कृष्ण का नाम लेगा, उसमें हमारा क्या बिगड़ता है। सारे भक्ति तो एक ही भगवान की करते हैं ना। हर एक अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम लेता है तो हृदय को तसल्ली होती है। हिंदू धर्म कभी किसी को अपना धर्म छोड़ने को नहीं कहता। गीता में भगवान ने कहा है कि जिसका जो धर्म है वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए हर एक को अच्छा इंसान बनना चाहिए। दया, सत्य और प्रेम, यही सच्चा धर्म है। इंसानियत बढ़ाना, प्रेम रखना, झगड़ों को मिटाना, यही धर्म का कार्य है। कुरान में एक सुंदर प्रसंग है। मोहम्मद पैगंबर एक स्थान पर कहते हैं आप लोग रोज अपने धंधों में लगे रहते हैं, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अपने धंधों को छोड़कर भगवान की शरण में आइए, उससे आपकी तिजारत भी अच्छी चलेगी। शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हमको रोज खाना पड़ता है। आत्मा के लिए तो 24 घंटे प्रार्थना की जरूरत है। जो वैसी प्रार्थना करते हैं वे महान हैं। उतनी योग्यता जिनमें नहीं है वे दिन का कुछ समय तो प्रार्थना के लिए निकालें और कम से कम हफ्ते में एक दिन तो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाएं। भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि प्रार्थना के कारण भी भेद बढ़ जाते हैं। एक पंथ वाले को दूसरे की प्रार्थना के शब्द सहन नहीं होते। जहां अहंकार आया वहां अच्छी चीज भी बिगड़ जाती है। भगवान के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो सब समान, सब शून्य हो जाने चाहिए। वहां कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई श्रीमान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। रात में चंद्र, तारे आदि भेद चाहे दिखाई दें, परंतु सूरज निकलने पर सब साफ हो जाते हैं।
0: अभी आपने सुना आज का चिंतन जो केंद्रित था एकता पर, यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं, समय है स्वास्थ्य संदेश का। कार्यक्रम में आज का विषय है आधुनिक जीवन शैली और कमर दर्द। कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की है।
2: स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, यदि आज के दौर की पुराने दौर से तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि जहां पहले कमर दर्द की समस्या बुजुर्गों को भी नहीं होती थी, वहीं आज के दौर में युवा ही नहीं वरन बच्चों को भी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर हम किसी रोग विशेष को हटा दें तो इसके पीछे अत्यधिक संसाधनों से पूर्ण जीवन शैली, शारीरिक श्रम एवं व्यायाम का अभाव, अनुचित खानपान, कमजोर पाचन तंत्र आदि मुख्य कारण हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे संपूर्ण शरीर का आधार है। यह 33 हड्डियों से बनी होती है जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। ये कशेरुकाएं एक दूसरे से लचीले एवं मजबूत लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, जो शरीर के दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ते समय इन कशेरुकाओं को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं। दो कशेरुकाओं के बीच गद्दीनुमा तंतु उपास्थ्य होती हैं और कशेरुकाओं के बीच से ही तंत्रिकाएं निकलकर शरीर के सभी अंगों तक जाती हैं। ये गद्दियाँ शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करती हैं, जिससे झटकों से ही सुरक्षा नहीं होती बल्कि गतिशीलता के दौरान दो कशेरुकाओं की सतह आपस में रगड़ भी नहीं खाती। इन गद्दियों में एक चिपचिपा चिकना पदार्थ भरा होता है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही तंत्रिकाओं द्वारा हमारा मस्तिष्क संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्हें जीवन में कभी कमर दर्द ने परेशान न किया हो। कमर दर्द उत्पन्न करने वाले सामान्य कारण इस प्रकार हैं। जीवन में शारीरिक सक्रियता का अभाव। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में प्रचलित कार्यशैली में शारीरिक सक्रियता से कहीं अधिक मानसिक सक्रियता जरूरी हो गई है। अपने और अपने परिवार के जीवन यापन हेतु ज़्यादातर लोग इस कार्यशैली को अपनाने को विवश हैं। अलग से कोई शारीरिक श्रम या व्यायाम तो दूर की बात है, दैनिक जीवन की सक्रियता की उपस्थिति भी नगण्य है। परिणाम स्वरूप शरीर की मांसपेशियां एवं स्नायु कमजोर व शिथिल होने लगे हैं। यही कारण है कि आजकल कमर दुखने की समस्या हर किसी के मुंह से सुनने को मिल जाती है। अत्यधिक शारीरिक वजन, अनुचित जीवन शैली और खान पान का ही परिणाम है कि मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिक शारीरिक वजन और व्यायाम का अभाव जहाँ शरीर की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को कमजोर करते हैं, वहीं शरीर की हड्डियों पर भार भी बढ़ाते हैं। पानी की कम मात्रा का सेवन, बहुत से लोग आदतन कम मात्रा में पानी पीते हैं या पीते भी हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के रूप में। रीढ़ की पेशियों, लिगामेंट्स और कशेरुकाओं के बीच पाई जाने वाली गद्दियों में जल की कमी से कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। तेज गति से वाहन चलाना, जिन लोगों का पेशा ऐसा होता है जिसमें फील्ड वर्क अधिक होता है, वे दोपहिया वाहन पर प्रतिदिन कई कई किलोमीटर यात्रा करते हैं। ज़्यादा समय वाहन चलाने और जल्दबाजी में किसी गड्ढे में वाहन जाने से कमर पर जोर पड़ता है और धीरे धीरे कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमर दर्द से मुक्ति के उपाय, यदि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए, यानी योग, व्यायाम, उचित आहार विहार को अपनी जीवनचर्या में शामिल किया जाए तो कमर दर्द ही नहीं बल्कि कई अन्य शारीरिक समस्याओं से भी बचाव हो जाता है, क्योंकि कमर दर्द की ही तरह कई अन्य रोगों की जड़ अनुचित जीवन शैली और गलत आहार विहार ही होते हैं। सक्रिय दिनचर्या को अपनाएं। यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि यदि मांसपेशियों को लचीला और शक्तिशाली बनाना है तथा हड्डियों के कार्यभार को कम करना है तो अपनी जीवनचर्या में शारीरिक सक्रियता को महत्व देना ही होगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्रातःकालीन आहार में खट्टे फल जैसे आंवला, मौसमी, संतरा आदि को शामिल करने से शरीर कब्ज से मुक्त रहता ही है। साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होने से शरीर की हड्डियां शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि हड्डियों के प्रमुख प्रोटीन कोलेजन के निर्माण के लिए विटामिन सी अत्यावश्यक होता है। दिन भर में पानी की उचित मात्रा सही विधि से सेवन करनी चाहिए। सामान्य मौसम में 2-3 लीटर पानी का सेवन करें। भोजन के 1 घंटा पहले व 1 घंटा बाद पानी का सेवन कर सकते हैं। भोजन के पहले व तुरंत बाद पानी का सेवन न करें। आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का उपयुक्त समावेश होना चाहिए। कैल्शियम हड्डियों एवं पेशियों दोनों की ही मजबूती के लिए आवश्यक होता है। रागी, दूध, दही, पनीर, छाछ, चीज, मक्खन और हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। श्रोताओं, स्वास्थ्य संदेश में आज बस यही तक जानकारी। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक नमस्कार।
0: आधुनिक जीवन शैली व कमर दर्द, ये था विषय आज के स्वास्थ्य संदेश का। कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर के बाद 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। सुनिएगा भाग संख्या 292। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुबह 7 प्रसारित किया जाएगा। आज की कलाकार हैं सरिता कक्कड़। इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे 7:31 पर होगा। नए फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स में। कार्यक्रम का प्रसारण समय 8:45 हमारी इसी सभा में। 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। और लखनऊ केंद्र से ही 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी रामपुर की पेशकश। सुनिएगा अफसाना सफेद पैराशूट। अफसाना निगार होंगी मोहतरमा नुसरत शमसी। कलाम शहर के तहत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अशरफ हुसैन का कलाम। उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम 9:50 पर आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाकिर खान का सारंगी वादन। धरोहर के अंतर्गत दिन में 11 आप सुन रहे हैं दक्षिण कामरूप की गाथा। आज प्रसारित होगा इसका 8 भाग। मन भवन के अंतर्गत गीतमाला 11:30 पर सुनी जा सकेगी। गीत आपके नाम कार्यक्रम 12:10 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा दिन में 1:15 पर। और फिल्मी गीतों ही का ही कार्यक्रम सुनहरा दौर 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। हमारी सायंकालीन सभा शाम 5 आरंभ होगी आज शाम कार्यक्रम के साथ। युवाणी 5:15 पर होगा और कृषि जगत प्रसारित होगा शाम 6:20 पर। छाँव बरगद के ये कार्यक्रम शाम 7 सुना जा सकता है। सुगम संगीत में 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर अंकिता के गाए हुए गीत और भजन। गीत गाता चल कार्यक्रम रात 8 प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और दिल्ली केंद्र से ही रिले होगा रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह था विवरण आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 292।
3: टू नाइन्टी टू।

मंदोदरी के अनुनय विनय का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने पटरानी की नीति युक्त प्रार्थना को मात्र नारी मन का भय बताया। राज्यसभा में जब उसने मंत्रियों से मंत्रणा चाही तो सभी ने श्रीराम की सेना के लंका में उतर आने को एक ऐसी नगण्य घटना बताया जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। ठाकुर सुहाती करने वालों का कहना था, जिसने देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए वानर सेना किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य तथा गुरु, जब ये तीन भयवश अथवा लाभ की आशा में स्वामी की हां में हां मिलाएं तो सत्ता, शरीर और धर्म का नाश अवश्यंभावी होता है। अभिमानी रावण के साथ भी यही हुआ। इस अवसर पर सभा में उपस्थित होकर विभीषण ने हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया। बार बार कहा कि क्रोध, मद और लोभ ये सभी विनाश के रास्ते हैं।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का भाग संख्या 292 ए हरिहरन और रविंद्र साठे के स्वर में। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार होंगे।

0: सरिता कक्कड़ के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के माध्यम से रिले होगा।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को
2: समझ। भारतीय आर्काइव्स,
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
5: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
3: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशक

0: मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हो चुके हैं। अगला कार्यक्रम है इन्फोटेनमेंट का, हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे है।

श्रोताओं नमस्कार, असीम की ओर से। सच है कि जिंदगी की भागती दौड़ती राहों में सुबह के ये पल बड़ा सुकून देने वाले होते हैं, फुर्सत से होते हैं और पूरे दिन भर हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसकी प्लानिंग भी चल रही होती है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं।

आवाज देते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो आपके सबसे करीब भी होते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा ही साथी है हमारा रेडियो, हमारा ट्रांजिस्टर, या फिर अब ऐप के जरिए जिसे हम सुन रहे हैं, मोबाइल, जिस पर हमें अपने उस आवाज़ के हम सफ़र से बात करने का मौका मिलता है। आकाशवाणी एक ऐसा साथी जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई अपेक्षा नहीं रखी, बस हर पल यही चाहत रही कि आवाज़ और आत्मीयता से जिंदगी को सुरमयी बनाते रहें। रेडियो हर घर का एक हिस्सा हुआ करता था और आज भी वो अटूट हिस्सा है हर घर का। रेडियो के चाहने वाले उसे दिलो जान से चाहते हैं। समय बदला, तकनीक बदली, दुनिया मोबाइल और इंटरनेट की ओर बढ़ गई, लेकिन उन श्रोताओं का आकाशवाणी के साथ आज भी वैसा ही रिश्ता बना हुआ है। जब भी मन उदास होता है, आकाशवाणी की कोई पुरानी दुनिया, वहाँ से प्रसारित कोई गीत दिल को सुकून दे जाता है। आकाशवाणी के साथ सभी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और राष्ट्र को विशिष्ट सेवा समर्पित करते हुए आकाशवाणी अपने 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। यकीनन मील का पत्थर है ये पड़ाव। गर्व है इस संस्थान से जुड़कर, चाहे प्रस्तुतकर्ता के रूप में या फिर श्रोता के रूप में। ये गौरवशाली 90 वर्ष हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

0: यादों के उस सफर में आज हमारे हम सफर हैं। आकाशवाणी रामपुर में कार्यरत रहे और आकाशवाणी प्रयागराज से सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री लोकेश शुक्ला।
1: महानिदेशालय के निर्देशानुसार देश भर के हर केंद्र आकाशवाणी के 90 वर्ष से संदर्भित कई विशेष कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग करके उनका प्रसारण कर रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर से भी आप ये कार्यक्रम अनुदिन सुनते होंगे। मैं लोकेश कुमार शुक्ल, सहायक निदेशक सेवानिवृत्त आकाशवाणी प्रयागराज हूँ। वर्ष 2001 से लेकर के सितंबर 2003 तक मुझे भी आकाशवाणी रामपुर में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा सिलेक्शन संघ लोक सेवा आयोग से डायरेक्ट कार्यक्रम अधिशासी सुगम संगीत के पद पर आकाशवाणी दूरदर्शन में हुआ था। मैं आकाशवाणी रामपुर 2001 में आकाशवाणी आगरा से स्थानांतरित होकर के आया था। वहाँ मुझे अपने वरिष्ठों से सीखने का, अच्छे नए कार्यक्रमों को बनाने का बड़ा सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें कि रजा लाइब्रेरी का लाइट साउंड बहुत बड़े पैमाने पर आकाशवाणी ने इसका कवरेज किया था। बधाइयों महोत्सव हो चाहे आकाशवाणी केंद्र परिसर में शास्त्रीय संगीत का कंसर्ट हो, कई आयोजन हम लोगों ने आयोजित कराए और पूर्व केंद्र निदेशक

शिक्षक केजी सिन्हा साहब, मोहम्मद अली मौत साहब, इंजीनियरिंग हेड राजेश कुमार जी, अनिल कुमार जी, कई वरिष्ठों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँ के स्टाफ को तो मैं भुलाए नहीं भूलता, कार्यक्रम अधिशासियों में मनदीप कौर जी, राम कुमार सक्सेना जी और हमारे फार्म एंड होम के सुखराम सिंह जी, कई लोगों के साथ बड़े सुखद संयोग जुड़े हुए हैं। अनाउंसर्स में चंद्रमोहन सक्सेना जी, सुधांशु नंदन, असीम सक्सेना, सुरेंद्र राजेश्वरी, जैसे लगता है कि अभी कल ही की बात है, शशि मोहन जी, मीना दयाल साहब, ये सब अपने परिवार जैसे लगते हैं। और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और कार्यक्रमों पे नई रोशनी मिली। मेरा तो एक इंटरव्यू भी आधे घंटे का उस वक्त प्रदेश स्तर पर हर केंद्र को एक टाइम टेबल मिला हुआ था, जो कि हर केंद्र को तैयार करके भेजना होता था। तो मनदीप जी ने मुझसे कहा कि भाई अब की मैं सोच रही हूँ कि आपका इंटरव्यू, आप तो अच्छे कलाकार हैं, म्यूज़िक डिसिप्लिन से सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने आधे घंटे का मेरा एक इंटरव्यू भी आकाशवाणी लखनऊ भेजा, जो कि प्रदेश स्तर से वहाँ से प्रसारित हुआ। तो इलाहाबाद में भी बहुत सारे लोगों ने सुना और मेरे पास एक पोस्ट कार्ड, उस वक्त चलते थे, आज भी चलते हैं लेकिन चलन कम हो गया है, पोस्ट कार्ड मुझे मिला, ये शैलेंद्र कुमार मिश्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तबले के प्रोफेसर रहे, बड़े अच्छे तबले के ग्रेड वन कलाकार रहे। तो उन्होंने कहा, अरे आपका इंटरव्यू सुना भाई, आप वही लोकेश शुक्ला है ना जो इलाहाबाद रहते हैं? तो मैंने उस पर जवाब लिखा कि हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब है कि आकाशवाणी हमेशा एक जोड़ने का काम करता है, एक परिवार जैसा माहौल देता है, उससे जुड़ करके हर पीढ़ी कार्यक्रमों से जुड़ती हैं और उनसे सीखती हैं। विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम हो, चाहे बाल संघ हो, चाहे युववाणी हो, चाहे वरिष्ठों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए कार्यक्रम हो, मतलब हर टेस्ट के कार्यक्रम आपको आकाशवाणी से सुनने को मिलते हैं। हम लोग बड़ी मेहनत से उसको तैयार करते हैं और आज भी जो लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं उनमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ोतरी ही हुई है। कितना मैं सराहूं आकाशवाणी को, आकाशवाणी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, नए नए अनुभव, नए नए कार्यक्रम। तो अब इस विषय में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं सभी सुधी श्रोताओं का सादर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उन्हें अपनी तरफ से बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

नौ दशकों की यादें इनको साझा कर रहे थे आकाशवाणी रामपुर से जुड़े साहब।

निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री लोकेश शुक्ला जी। एक रिश्ता बन जाता है रेडियो के साथ, और आकाशवाणी तो वैसे भी यादों का खजाना है। केवल गीत नहीं सुनाता आकाशवाणी, भावनाएं जगाता है, रिश्तों को जीवंत करता है और मन के सूने कोनों को रोशन कर देता है। दिल और एहसास का एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि हर वो शख्स जो आकाशवाणी से जुड़ा है, उसको अगर आकाशवाणी के बारे में कुछ कहना हो तो शायद ये गीत सही भावनाएं जाहिर करता है।

शतमास तारीख है 9 मई, और आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ इस पर चर्चा करते हैं। 9 मई सन 2000 को जाफना प्रायद्वीप के एलिफेंट दर्रे पर कब्जे के लिए लिट्टे और श्रीलंका के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। 2010 में

जयंती मनाते हैं, उनमें 9 मई 1935 में जन्मी थी प्रसिद्ध हिंदी कवित्री स्नेहमयी चौधरी, प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्यकार और लेखक रविंद्रनाथ त्यागी का जन्म 1930 में हुआ। आज गोपाल कृष्ण गोखले साहब की भी जयंती है, 1866 9 मई को आपका जन्म हुआ था। स्वाधीनता संग्राम में आपका विशिष्ट योगदान है, समाजसेवी विचारक और सुधारक के रूप में आप लोकप्रिय रहे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेत्र रोग विशेषज्ञ फर्डिनांड मोनोयर का जन्म हुआ था 1836 में। बहादुर शाह प्रथम के चार पुत्रों में से एक जहांदार शाह का 9 मई 1661 में जन्म हुआ था। और आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा वीर प्रतापी महाराणा प्रताप की, 9 मई 1540 आपकी जन्म जयंती है। 9 मई को जिनकी पुण्यतिथि पड़ती है उसमें आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एन जनार्दन रेड्डी, 9 मई 2014 को आपका निधन हुआ था। भारतीय शिक्षाविद कर्मशी जेठाबाई सोमैया, 1999 में आपका देहांत हुआ। राष्ट्रवादी हिंदी सेवी और आर्य समाज के प्रमुख नेता भवानीदाल सन्यासी का 1959 में निधन हुआ। हिमालय पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरगे का 1986 में देहावसान हुआ। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल प्रभाकर की पुण्यतिथि है आज, 1995 में आपने इस दुनिया को अलविदा कहा था। और आज प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद की भी पुण्यतिथि है, 1998 में आपका देहांत हुआ था। आज हम नमन कर रहे हैं महाराणा प्रताप को। भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के सम्मान की जब भी बात होती है तब स्वर्ण अक्षरों में जो नाम लिखे जाते हैं उनमें सबसे ऊपर नाम महाराणा प्रताप का दिखाई देता है। केवल मेवाड़ के शासक ही नहीं थे, वो प्रतीक थे स्वतंत्रता के, साहस के, आत्मसम्मान के। पूरा जीवन संघर्ष, त्याग और अदम्य वीरता की ऐसी मिसाल बना जो आज भी हर भारतीय के मन में जोश का संचार करता है, गर्व की भावना जगाता है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में आपका जन्म हुआ, पिता उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई। बचपन से ही प्रताप में वीरता थी, स्वाभिमान था, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। कठिन परिस्थितियों में पले शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की प्रताप ने। उस समय भारत में अकबर का शासन था और अनेक राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी समझौता नहीं किया अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ। ये प्रण लिया कि जब तक प्राण है मेवाड़ की धरती पराधीन नहीं होगी। सन 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, भारतीय इतिहास का एक अमर अध्याय। इस युद्ध में यूं तो महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी सी थी, लेकिन विशाल भावना के साथ, वीरता के साथ उन्होंने मुगलों की सेना का सामना किया। प्रिय घोड़े चेतक की वीरता भी इतिहास में अमर हो गई, लेकिन घायल होने के बाद भी चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद भी राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी, जंगलों और पहाड़ों में कठिन जीवन बिताया, घास की रोटियां खाई, लेकिन झुकने नहीं दिया अपने आत्मसम्मान को। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों और मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करे। उनका त्याग, उनका पराक्रम, उनकी देशभक्ति हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ये नाम जब भी सुना जाएगा सच्चे भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। महाराणा प्रताप इतिहास के महान योद्धा ही नहीं, राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो

मस्ती की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

एक बार फिर नमन भारत के इस वीर सेनानी को जिसने सब कुछ सहा पर गुलामी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप की वीरता हमेशा भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। और आज हम याद कर रहे हैं तलत महमूद साहब को भी, जिनका निधन हुआ था 9 मई 1900

1998 को एक मखमली आवाज जिसकी मिठास हम महसूस करते हैं जब भी उनके गाए गीत सुनते हैं। आपको बता दें कि आज गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में हमारे साथ रहिएगा, हम और आप मिलकर सुनेंगे तलत महमूद के गाए हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। अब असीम को आज सुबह सवेरे कार्यक्रम से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

अभी आपने सुना इन्फोटेनमेंट का हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे।
0: तमिलनाडु में

0: तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और

0: मुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
0: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, आज बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है।

0: पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पदीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसरे इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर RN रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि RG खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक्किद कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाज फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने

0: इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा, बजाय इसके कि इससे तनाजे को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस करारदाद को अमरीका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमरीका ने ईरान पर कमर्शियल जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमजोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फौज ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फजाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फजाई निजाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाजाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है, जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज दो जहाजों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाकयात के बावजूद सिफारती इजराइल ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकांग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हथियार और शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामेनिगार से।
2: अमेरिका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वह ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वह एयरलाइंस समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आजाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे खजाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज और इलाकाई इत्तेहादियों में जहाजों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोजा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी माहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंगबंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस माहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन में केरलम, माहे, तकसीब, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में

0: 12 बजे होगी। वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी समेत सरकार का लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बढ़तरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का उनसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमारती आदाद शुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निज़ाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदाद दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के पांचवें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुतफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत MSMEs ताउन को फरोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाय किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले BJP वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: 102.9 मॉर्निंग हिट्स का ये पहला गीत फिल्म ढिंडोरा से गौतम आशीष और लारिसा की आवाज़ों में।
1: मैंने कहा ना ये मेरा नाम है। वैसे तुम्हें मेरा नाम पता है?

0: close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: धुरंधर टू, इस फिल्म का गीत अभी आप वैभव गुप्ता, शहजाद अली और शाश्वत की आवाजों में सुन रहे थे। 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।

श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी।

और रोमियो। इस फिल्म का गीत अभी आप जावेद अली और मधुवंती बागची की आवाजों में सुन रहे थे। अगला गीत है फिल्म सूबेदार से, जीटी कौर और साथियों ने इसे गाया है।

ये गीता फिल्म द गर्ल फ्रेंड का, जिसे गाया था जसराज जोशी ने। 102.9 मॉर्निंग हिट्स का ये अगला गीत आदर्श गौतम और लोथिका की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तू या मैं।

लक्ष्मीत कौर के गाये फिल्म थम्मा के इस गीत के साथ ही आज का 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर। आपका अपना आकाशवाणी रामपुर, जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव।

336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। सवेरे के 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में जिले की हलचल कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
1: शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। डीएम ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, पीसीएफ के 16, पीसीयू के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल की गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेड़ा आर बी वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाए जाने वाली प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के एसटीकेवी फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। शामली में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश अनुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल शुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहां अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों

0: में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी सत्र में सरसों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है, वहीं पॉपुलर के पेड़ और आम के बाग किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
1: जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सह फसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीच की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का।
3: जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SC ID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवसवार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग साथ मनाई गई।

0: सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधवपुर में नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

ये प्रेरक प्रसंग है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से। गुरुदेव ने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता के उनके विषय दिव्यता, अस्तित्व, प्रकृति और सौंदर्य रहे। उनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे जो खुद एक विद्वान सिद्ध व्यक्ति थे। ये बुजुर्ग दूर से भी कहीं उनके रिश्ते में लगते थे। जब भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहीं भाषण या व्याख्यान देने जाते तो ये बुजुर्ग सज्जन भी वहां पहुंच जाते और उन्हें देखते रहते। जब भी रविंद्र जी उनकी तरफ देखते तो अचानक असहज हो जाते। टैगोर सूर्यास्त देखने के लिए नदी के किनारे की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में ढेर सारे गड्ढे थे जो पानी से भरे थे। टैगोर उन गड्ढों से बचते हुए सूखी जगह तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे। दरअसल वो बुजुर्ग को मौका मिलते ही वो टैगोर से सवाल करने लगते कि तुम इतना सत्य के बारे में बात करते हो, लेकिन क्या तुम सचमुच इसके बारे में जानते हो? टैगोर को पक्के तौर पर यह पता नहीं था कि वो बुजुर्ग जानते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान लेखक थे कि जब आप उनकी कविता पढ़ते हैं तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो बिना अनुभव या बिना जाने उन्होंने सारी चीजें लिखी होंगी। लेकिन वो बुजुर्ग फिर भी इसे लेकर उनसे लगातार सवाल करते रहते। इसलिए जब भी गुरुदेव की नजरें उनसे मिलती वो सक पका उठते। हालांकि धीरे धीरे उनके भीतर इसे लेकर एक खोज जारी हो चुकी थी कि आखिर वो क्या है जिसके बारे में मैं बात तो करता हूं लेकिन उसे जानता नहीं हूं। एक दिन बारिश हुई और फिर रुक गई। टैगोर को हमेशा नदी के किनारे सूर्यास्त देखना बहुत अच्छा लगता था, तो उस दिन भी टैगोर सूर्यास्त देखने के लिए नदी के किनारे की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में ढेर सारे गड्ढे थे जो पानी से भरे थे। आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी नजर पानी से भरे एक गड्ढे में पड़ी, जहां प्रकृति का पूरा प्रतिबिंब उस सड़क के गड्ढे में दिख रहा था। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ बहुत बड़ी चीज घटित हो उठी हो।

वहां से सीधे उस बुजुर्ग के घर गए और जाकर उनका दरवाजा खटखटाने लगे। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और एक नजर रविंद्र जी की तरफ देखा, फिर बोले, अब तुम जा सकते हो क्योंकि तुम सच जान चुके हो, ये तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम जीवन की हर छोटी से छोटी चीज में सत्य व दिव्यता की झलक पा सकते हैं। ये था आज का प्रेरक प्रसंग। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आकाशवाणी रामपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।

खास किस्म के बेड पर लेटना पड़ता है। वो नहा धोकर सफ़ेद पैराशूट पहनता है। उसे खामोश भी रहना पड़ता है और आंखें भी बंद रखना पड़ती हैं। फिर एक और ख़ास जगह होती है, जैसे जहाज़ों के उड़ने की जगह खास होती है, बिल्कुल वैसी ही उसका भी एक मैदान होता है और उस दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। सब लोग मिलकर उसे उस मैदान में छोड़ आते हैं। फिर अल्लाह ताला सफ़ेद परों वाले फरिश्ते को गाड़ी लेकर भेजते हैं और लोग वहाँ दूसरी दुनिया में जाकर रहने लगते हैं। हम दोनों बहन भाई मम्मी का मुंह हैरत से तका करते। फिर मैंने हैरानी से पूछा, फिर ये क्या हो सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद वहाँ उस दुनिया में रहने चली जाऊँ? हमें लेकर जाएंगी? मेरी बहन ने मासूमियत से पूछा। नहीं नहीं वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते। तो फिर आप हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? उसने फिर सवाल किया। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि बिल्कुल आप जैसे मेरे बच्चे वहाँ भी हैं, बल्कि उनके नाम भी यही हैं जो अभी तक मेरे बगैर रह रहे हैं। अब मैं उनके साथ रह लूँगी। आप लोग पापा को तंग नहीं करना, रोना धोना बिल्कुल मत, और जो मैं समझाती हूँ उसे याद रखना और अच्छा इंसान बनना, खूब पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनकर दिखाना। मैं वहाँ की दूरबीन से देखती रहूँगी। हो सकता है आप लोग अच्छे बच्चे बने रहें तो मैं वापस आ जाऊँ, पर मेरी एक शर्त है, इस बार मैं शक्ल बदल कर आऊँगी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? ये भी तो देखना है कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं। वो मुस्कुराकर हमारे पेटों में गुदगुदाती तो समझ गए ना, मेरे दोबारा आने पर मुझे अच्छे बच्चे बने हुए मिलना और खा पी कर थोड़े बड़े भी हो जाना। अशु तुम तो मुझे निकाल लेना, बड़े हो जाना पापा की तरह। वो फिर गुदगुदाती, और हाँ ये टॉप सीक्रेट है, अभी किसी को बताना मत। वो हमारे कान में फुसफुसाती और फिर सीने से लगाकर भींच कर प्यार करती। जब वो हमें अलग करती तो लगता कि रोई हैं, लेकिन वो तो मुस्कुरा रही होती थी। इस कहानी ने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे उस दिन का इंतजार रहने लगा कि कब वो दिन आएगा और मम्मी जाएंगी उस दुनिया में, जहां बहुत खूबसूरत पार्क होंगे, तितलियां होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, पेड़ होंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करेंगी। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मम्मी ने एक दिन अचानक ही आंखें बंद कर ली। उनके हाथ की लगी हुई सुई निकाल दी गई और एक सफ़ेद चादर उन्हें उड़ा दी गई। मैंने चुपके से अपनी बहन के कान में कहा, क्या मम्मी आज दूसरी दुनिया में जा रही हैं? उसने मुझे देखा और कहा, लग तो रहा है, लेकिन किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है, मम्मी ने मना किया था। तो फिर सब रो क्यों रहे हैं? और क्या आज हमारे घर मम्मी के जाने की दावत है? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। दादी ने मुझे बुलाकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाया और बड़े प्यार से समझाया कि अशु बेटा, मम्मी अल्लाह मियाँ के पास जा रही हैं, अब नहीं आएंगी, उन्हें प्यार कर लो और देख लो। पता है, मुझे सब पता है, मम्मी ने मुझे सब बता दिया था। मैं उनका हाथ छुड़ाकर भाग गया, क्योंकि मुझे लोगों के हुजूम से घबराहट होने लगी थी। फिर वो सब होने लगा जो मम्मी ने कहानी में सुनाया था। कई घंटों की तैयारी के बाद उन्हें सफ़ेद लिबास, जिसे वो दूसरी दुनिया में जाने का पैराशूट कहा करती थी, पहनाया गया और लोग इकट्ठा होकर उन्हें उस मैदान में ले आए। मैं भी पप्पा की उंगली पकड़े साथ साथ था। अब मुझे तजस्सुस था उस जगह को देखने का, जहाँ से फरिश्ते उन्हें लेकर दूसरी दुनिया में जाते। ये तजस्सुस बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कोई बच्चा जहाज देखने की तमन्ना करता है कि वो कैसे उड़ जाया करता है। वहाँ की भीड़ में मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहा था और फिर कामयाब भी हो गया। सबकी टांगों के बीच से घुसकर मैं बिल्कुल उनके करीब हो गया। पप्पा बराबर हिचकियों से रो रहे थे और मैं हैरानी से उनका मुँह तके जा रहा था कि मम्मा को तो कहानी सुनाकर गई थी और फिर ये सब। कुछ ऐसे बाद जैसा कि मम्मी ने कहा था, मैं वापस आऊँगी, वो आ भी गई, लेकिन उनकी शक्ल भी बदल गई थी और वो खुद भी। फिर भी मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी बहन जो अब 9 साल की होने को आई थी, चुप चुप सी थी। मैं सुर्ख जोड़े में लिपटी अपनी मम्मी के पास घुसा चला जा रहा था और चाहता था कि वो पहले की तरह भींच कर मुझे सीने से चिमटा लें। ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरी रूह को वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। मम्मी की शक्ल भी बदल गई थी, साथ में काफ़ी बातें भी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ पर मेरी माँ की बनाई हुई कहानी खुलती गई और उसके सुनाने का मकसद भी समझ में आता गया। वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए। मेरी बहन की शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन मेरी जिंदगी से सफ़ेद रंग ना निकल सका। मेरी दुल्हन नीलो भी सिल्वर कलर के जोड़े में मेरे सफ़ेद पेंट वाले कमरे में मुझसे मिली थी और मेरी शादी का सूट भी सफ़ेद शेरवानी का ही था। मम्मी की सुनाई कहानी का मकसद पूरा हो चुका था और मैं एक कामयाब खुशबाश इंसान और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। नीलो बहुत अच्छी हमसफर साबित हुई। उसके साथ से जिंदगी ने कई रंग धनक

0: देखे जिनकी रोशनी ने मुझे अंदर तक नूर से भर दिया। नीलों के साथ जिंदगी का सफर कहीं हसीन तो कहीं कारदार तो कहीं नरम मिट्टी पर चलते गुजरता चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरी जिंदगी की शाहरा उसे हम सफर के साथ रंगीन थी, लेकिन फिर भी इस सफेद रंग को अपनी जिंदगी से ना निकाल सका। सफर की मुसाफत के भी 40 पड़ाव गुजर चुके थे, अब ना जवानी रही थी और न पूरा बुढ़ापा, लेकिन सफर अभी बाकी था कि एक दिन अचानक ही नीलो मेरा साथ छोड़ गई। मम्मी की सुनाई कहानी मेरे घर में फिर शुरू हो गई और मेरी आंखों के सामने 65 साल पुरानी कहानी रील की तरह चल पड़ी और मैं अपनी नीलो का पैराशूट निकाल कर उसे बाहर दे आया।
1: सफेद पैराशूट, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे नुसरत शमसी से उनका अफसाना। समीन, यह हकीकत है कि सरजमीन रुहेलखंड में शायरों और अफसाना निगारों की कमी नहीं। दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक कई ऐसे शायर और अफसाना निगार हुए हैं जिनकी तख्लीकात पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। तो समीन, आइए आज अदब की इस खास सिंफ शेर व शायरी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शायरी का ताल्लुक हमारे जज्बात से है, फिक्र से है और ख्याल से है। मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, पुरसोज गीत हैं ये किसी दर्द ला दवा के। तो आइए समाप्त करते हैं सिलसिला कलामी शायर के तहत ये खूबसूरत कलाम। आज के हमारे मेहमान शायर हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन।
2: आइए हजरात, गजल का मतलब आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ। समात करें हजरात।

लीजिए अब सुनिए उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जाकिर खान का सारंगी पर बजाया राग सिंध भैरवी। तबला संगत है शोभा रानी कुदेसिया की। तो लीजिए सुनिए जाकिर खान से सारंगी पर राग सिंध भैरवी।

अभी आपने सुना उस्ताद जाकिर खान का सारंगी पर बजाया राग सिंध भैरवी। तबला संगत की थी शोभा रानी कुदेसिया ने। उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। अगला कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। आपके पत्रों के साथ हाजिर हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों को लेकर। ये पहले गीत की फरमाइश आप सबके मिली है मौला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी हिना कौसर, कोटवन नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, डबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया, शोएब खां और नवेद, सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान शेख, पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, रुबीना वसीम, नदीम अक्रम, ममन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख, क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर, मौला झंडा रामपुर से लियाकत भाई, गौसिया, सिदरा, उबैद खां, प्रेम प्रकाश, सुभाष, अनुराग, जमील भाई, कुमार पाल, श्यामलाल और बबलू सैनी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भत्ता के साथ पूरा भत्ता परिवार, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय, नंदिनी, विवेक, विशाल, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भैयू दादा, शिवापुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया और कमला बाग, छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद, बोटसरा नेहला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। ये फरमाइश है पटेल नगर मलोट पंजाब से आई हुई। फरमाइश भेजने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया, बरादरी महमूद हरामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, फिरोजा मुस्कान और शाइना काजल। आप सबने सुनना चाहा है गंगा जमुना सरस्वती फिल्म में लता मंगेशकर को।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाटकर का गाया हुआ फिल्म परिंदा के इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत। महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार के लोग। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, प्रमिलागंज जालोट जिला रतलाम से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ। दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन वर्मा, आरोही इशिका और अंजलि श्वेता वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक इंदौर से हैं। स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, बाहू मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल मालेगांव से। और राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ, शाइना शर्मा और निवान शर्मा आदर्श नगर मलोट पंजाब से। मलोट पंजाब से ही सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा यासमीन गुड़िया और अब्दुल बाबा अनजाना। पुणे से पंकज बड़ौदे, आर्या प्रियंका, बीटी बड़ौदे, चंद्रप्रभा।

पढ़ाओ दे। जरूर वरुण महाराज से मीनाक्षी चर्पे रजनीका नीरे कार्तिक और युवराज सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे रमाताई सीमाताई रीमाताई दीक्षाताई डोंगर दिवे और राहुल मेन रोड तिलहरा से प्रकाश पोहरकार नर्मदा पोहरकार सुनीता साहिल अंश पोहरकार और सुजाता पोहरकार। आप सबके अनुरोध पर आपकी पसंद का फिल्म परिंदा का ये गीत।

आपके अनुरोध पर फरमाशी फिल्म गीतों का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं। अगला गीत हमारे इन साथियों की फरमाइश पर मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाणकर, रही सरिता गोहाणकर, प्रिंस एकांश, सिद्धांत प्रणीता, शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित गोहाणकर और धनी गोहाणकर पर ही नूर महल, सीतामणि से मुसर जहां, नाज तलत जहां, फरज जहां, रिफत जहां, नुसत जहां, शाजिया शाहीन, नाजिया नूरी नास, जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा से नरेंद्र नरवणे, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु सिंह और ऋषभ सिंह। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म क्रिमिनल में कुमार सानू और अलका याग्निक को।

सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, सम्राट चौक शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली यारव, जयश्री जोशी, माधुरी जोशी और जीवाई देशमुख, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा शालिया, शोएब खान, पोतरा से मुस्तफा खान, रऊ भाई और शाहिद भाई, विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान वारणा शहर कोल्हापुर से, परिमल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान और इल्मा खान, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की, बुशरा, आसिम खान, संदीप सक्सेना, जिला अस्पताल के पास रामपुर से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलाफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त डाकला परिवार, आप सबके अनुरोध पर परदेसी बाबू फिल्म का यह गीत।

आपके अनुरोध पर। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी रामपुर से अब प्रस्तुत है गोल्डन हिट्स कार्यक्रम। श्रोताओं, जब जब भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास की बात होती है तो गीतों की मधुरता, नजाकत, दिल को छू लेने वाली गायकी का जिक्र होना जरूरी हो जाता है। तब एक नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, वो नाम है तलत महमूद। आवाज ऐसी मखमली, नरम, जो सीधे दिल की गहराइयों तक उतरती, ऐसा लगता मानो कोई धीमी हवा मन के बंद झरोखों को सहला रही है। तलत महमूद केवल एक गायक नहीं थे बल्कि एहसासों के जादूगर थे।

ऐसे न जाने कितने नाजुक गीतों को तलत महमूद की मखमली आवाज़ का सहारा मिला और वो गीत हिट गीतों की लिस्ट में शामिल हुए। तलत महमूद साहब की गायकी में एक तरफ दर्द था तो दूसरी तरफ मोहब्बत थी, तन्हाई भी थी और थी उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी। जब वो गाते तो सुनने वाला खुद को उन भावनाओं में डूबता हुआ महसूस करता था। उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत मानी गई उसका कंपन, एक हल्की सी थरथराहट जो हर शब्द को जीवंत बना देती थी। यही वजह थी कि उन्हें मखमली आवाज़ का बादशाह कहा गया। वो दौर था जब ऊंचे सुरों और भारी आवाज़ों का चलन था। ऐसे में तलत साहब ने अपनी नरम और संवेदनशील गायकी से बनाई अपनी एक अलग पहचान। वो खुद कहते थे, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा।

तलत महमूद की प्रतिभा पहचानी भी गई और सराही भी गई। हिंदी फिल्मी गीतों के साथ साथ गजलों को भी उन्हें ऊंचाई देने का मौका मिला और उन्होंने ऐसा किया भी। उनकी गायकी में उर्दू अदब की मिठास और शायरी की रूह थी। उनके गीत, उनकी गजलें केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और यही वजह है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी बरकरार है उन गीतों में तलत साहब की आवाज का जादू। दुनिया बहुत बदल चुकी हो भले ही, लेकिन तलत महमूद की मखमली आवाज़ आज भी पुराने रेडियो महफिलों और संगीत प्रेमियों के दिलों में उसी ताजगी के साथ गूंजती है। उनकी आवाज़ हमें यह एहसास कराती है कि सच्चा संगीत समय की सीमाओं के परे होता है। मिर्ज़ा गालिब फिल्म की यह गज़ल जो उन्होंने सुरैया के साथ गाई गई थी, आज भी अपनी मिसाल खुद में है।

जब जब हिंदी फिल्मी गायक या गायिकाओं की वेलवेट वॉइस का जिक्र होता है तो एक ही नाम सबकी जुबान पर होता है, वो है तलत महमूद। जन्म हुआ था 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में। परिवार शिक्षित भी था और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी रत था। बचपन से ही संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी आवाज़ की खासियत को पहचानते हुए परिवार ने भी उन्हें संगीत की तालीम दिलवाई। कम उम्र में ही उन्होंने गायन शुरू कर दिया था। आकाशवाणी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के माध्यम से उनकी पहचान बनने लगी। शुरुआती दिन में उन्होंने बंगाली गीत और गजलें भी गाईं, लेकिन उनकी आवाज़ में जो दर्द और नज़ाकत थी उसने उन्हें अन्य गायकों से अलग पहचान दी। फिल्म जहां हरा का ये गीत इसकी एक जीती जागती मिसाल है।

फिल्मी दुनिया में दलत महमूद साहब का सफ़र 1940 के दशक में शुरू हुआ और धीरे धीरे वो हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में शामिल हो गए। भावनाओं की ऐसी मिठास थी उनकी गायकी में कि हर गीत सीधे दिल में उतर जाता। अनेक अमर गीत गाए उन्होंने, जाएं तो जाएं कहाँ, या फिर छाया का गीत इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, शाम गम की कसम हो, या फिर वही शाम

तलत महमूद, एक ऐसा नाम जिसकी आवाज़ ने गीतों को एक नई पहचान दी, ऊंचे सुरों से अधिक भावनाओं की गहराई पर जिसने सुर दिया, नई नज़ाकत और शायरी की मिठास अपने गीतों गज़लों में डाली, अभिनय भी किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था, लेकिन उनकी असली पहचान हमेशा एक महान गायक के रूप में ही रही। कई सम्मान भी उन्हें भारतीय संगीत जगत में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किए गए, और सबसे बड़ा सम्मान यही है कि वो आज हर संगीत प्रेमी के दिल में कहीं ना कहीं जगह रखते हैं, लोग उन्हें स्नेह के साथ याद करते हैं। 9 मई 1998 को मुंबई में तलत महमूद का निधन हुआ। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत ने एक ऐसी आवाज़ खो दी जिसकी मिठास, जिसकी संवेदना सदियों तक याद की जाती रहेगी। एहसासों की आवाज़ थी तलत साहब की आवाज़, उनकी आवाज़ आज भी हम सबके दिल में है। उनके मधुर गीत जब भी सुनते हैं हम भावनाओं में, एहसासों में, जज्बातों में डूब जाते हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे तलत महमूद के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। प्रसारण आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से किया जा रहा था।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा। आज आइए सुनते हैं इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी।

प्रस्तुत है आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध असमी लेखिका इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा। रूपांतरकार हैं सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता। निर्देशक हैं कैलाश भूटानी।

इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित दक्षिणी कामरूप की गाथा एक अनूठी और असाधारण अनुभव यात्रा है। तीन विधवाओं के अभिशप्त जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस अनुभव यात्रा में 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने तक का परिवेश दर्शाया गया है। अमरंगा सत्र का भावी गोसाई युवा इंद्रनाथ इन तीनों विधवाओं का एकमात्र सहारा है। इन विधवाओं में एक उसकी छोटी बहन है, दूसरी उसकी बुआ और तीसरी उसकी चाची है। धारावाहिक में एक ओर जहां इन युवा विधवाओं की वेदनाओं को दिखाया गया है, वहीं सत्र के अधिकारियों के विलासपूर्ण जीवन और तड़क भड़क वाले जीवन के पतन को भी चित्रित किया गया है। असमी परिवेश, मार्मिक संवाद और दिलचस्प घटनाक्रम धारावाहिक को जीवंतता प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दक्षिणी कामरूप की गाथा की 8वीं कड़ी।

0: गुसाइन, छोटी गुसाइन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या सोच रही हो बांस के साथ टिके हुए?
1: कहाँ कहाँ?
0: वो देखो, अरे हट हट हट, भाग
1: यहाँ से। हे ईश्वर, इसने मेरा कितना काम बढ़ा दिया। अब मुझे सारे बर्तन अग्नि जलाकर पवित्र करने पड़ेंगे। ऊपर से ये महीधर भी अभी तक नहीं पहुंचा है।
0: अरे छोटी गुसाई, वो देखो, वो जो तुमने चावल भिगो के रखे थे ना, उसमें भी कुत्ता मुंह डाल गया। अरे छोटी गुसाई, छोटी गुसाई, देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। बताओ ना क्या बात है, सब ठीक तो है ना?
1: हाँ सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जरा मेरी मदद तो करो ना।
0: हाँ हाँ बोलो।
1: तुम यहाँ पर आग जला दो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं बर्तनों को हाथ।
0: आपको कहने की आवश्यकता नहीं है छोटी गुसाइन, मैं बर्तनों को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं अभी आग जला देती हूँ।
1: आया
0: जी मालकिन।
1: तुमने आग जला दी?
0: जी मालकिन।
1: लो मैं बर्तन भी ले आई हूँ,
0: इधर रख दीजिए, मैं यहाँ से दूर हट जाती हूँ।
1: ये ले।
0: अरे अरे अरे मालकिन, आराम से मालकिन, वरना बर्तनों में गड्ढे पड़ जाएंगे और देखने में बुरे लगेंगे।
1: अरे पड़ने दे गड्ढे, कौन देखने आ रहा है यहाँ?
0: क्या हुआ छोटी गुसाइन, इतना अधिक परेशान तो मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर ऐसी कोई बात है जो मुझे बता सकती हो तो मालकिन कृपा करके मुझसे कुछ नहीं छिपाएं। आपको तो मालूम है आपकी कितनी पुरानी दासी हूं, और फिर मुझसे क्या छिपा है इस गोसाई परिवार का?
1: हाँ आया, सही कहती हो, तुमसे गोसाई परिवार का क्या छिपा है? और फिर अब देखो ना, ये महीधर मुझसे यात्रा मंडली में जाने के लिए 3 दिन का कहकर गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। उसी का इंतजार कर रही हूँ, वो पगला।

0: बेटा जगन्नाथ हाथी इधर उधर घूम रहा है।
1: सही सही बताइए मालकिन, क्या इसी बात का डर है? महीधर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मालकिन, क्या कोई और कारण तो नहीं है?
0: और क्या कारण हो सकता है? वो
1: मालकिन, आप मुझसे लाख छिपाना चाहें लेकिन छिपा नहीं सकती। क्या आपके घर में मुट्ठी भर धान नहीं रह गया है? क्या सरसों का तेल अब केवल इतना नहीं रह गया जो 2 या 3 दिन ही चल सके?
0: मैं तुमसे अब और क्या कहूं?
1: मालकिन, मैं आपकी पीड़ा खूब समझती हूं। छोटे गोसाई के सामने जो यहां अनाज के भंडार लगे रहते थे वो देखे हैं मैंने। सरसों के तेल को नौकरों में बढ़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो मान और प्रतिष्ठा जितनी छोटे गोसाई के सामने रही उतनी शायद आपको फिर कभी नहीं मिली। मालकिन, आपको नहीं लगता कि ये सब कितना अप्राकृतिक है?
0: छोटे गोसाई रहे नहीं, मैं अब और क्या कर सकती हूं? शायद इन सब बातों का हल मुझे महीधर में ही नजर आया है।
1: मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात अपने अनुभव से कह डालूं।
0: हाँ, कहो आया, तुम तो मुझसे कह सकती हो।
1: मालकिन, जिस समय आप विधवा हुई थी उस समय आप चढ़ती बढ़ती बेल थी। आपको जिसका भी सहारा मिलता आप उसे अपना लेती। और इत्तेफाक की बात है, आपको उस समय महीधर मिल गया जिसकी पत्नी मर चुकी थी और पेट पालने के लिए उसे नौकरी की आवश्यकता थी।
0: हाँ हाँ, सही बात है, ये सब उसके साथ हुआ था। तो क्या कहना चाहती हो तुम?
1: मालकिन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने सहारे की आवश्यकता तुम्हें थी उतने ही सहारे की आवश्यकता उसे भी थी।
0: हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो।
1: चलो, जो हुआ ठीक हुआ, शायद ये सब होना ही था, शायद ये सब ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन बात तो उससे कहीं आगे बढ़ी और शायद
0: आया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो।
1: नाराज न हो मालकिन, मैं तो केवल वही बात बोल रही हूँ जो सत्र में फैली हुई है।
0: तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं? उस महीधर को क्या मैं अपने पैरों पर रखूं? उस आदमी को जिसने मुझे जमीन का लगान दिलवाया, उसका कर्ज चुकवाया, अगर वो ना होता तो शायद मैं भूखी मर जाती। और इतनी जमीन की देखरेख, कितना देना है कितना रोकना है, सारा हिसाब किताब वही महीधर ही तो देखता है। आज जबकि जमीनों को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे समय में महीधर को घर से निकाल दूं?
1: तुम्हारी बात से मैं एकमत हूं मालकिन, लेकिन लेकिन महीधर का गलत पक्ष तो न लो कि तुम्हें बदनाम होना पड़े।
0: क्यों, ऐसा कौन सा मैंने गलत काम कर दिया?
1: देखो मालकिन, जब दुर्गा गोसाइन के आभूषण चोरी हो गए थे तो केवल एक तुम ही थी जिसने महीधर को निर्दोष बताया था, बाकी सब ने उसे दोषी माना था।
0: वो निर्दोष था इसीलिए मैंने उसे निर्दोष कहा था।
1: नहीं छोटी गोसाइन, नहीं, तुम उसे बचाना चाहती थी इसीलिए तुमने उसे निर्दोष बोला था।
0: हो सकता है चोरी किसी और ने की हो। देख नहीं रही हो कि अफीमचियों की तादाद कितनी बढ़ गई है?
1: देख रही हूँ, इसीलिए तो ये बात कह रही हूँ कि अमरंगा सत्र में अफीमचियों की संख्या जितनी भी बढ़ जाए लेकिन उनका नैतिक स्तर इतना नहीं गिर सकता कि वो गोसाई परिवार की किसी गोसाइन के आभूषण चुराएं।
0: आखिर तुम कहना क्या चाहती हो?
1: यही कि जिस पर तुम इतना भरोसा किए हुए हो वो महीधर चोर है।
0: नहीं,

0: प्रणाम माता।
1: प्रणाम। आइए बंधु। अरे आया
2: जी,
1: आगंतुकों के लिए जरा चटाइयां तो लाना।
2: जी मालकिन, अभी
3: नहीं, नहीं बातें, हमारे पास बहुत समय नहीं है, हम केवल बहुत कम समय के लिए आए हैं। ये होमगार्ड मुझे मिल गए, ये यहीं के आदमी हैं, इसलिए आपके पास आने में सुविधा हो गई।
4: आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं?
1: नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। हाँ बताइए क्या बात है। भगत जी, आप कहाँ से आए हैं?
3: क्षमा माता, मैं आपकी पात हल्दिया वाली जमीन से आया हूँ, और वैसे तो आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हमें आपके पास आना पड़ा। माते, वो आपके मईदर बाबू असमी अनुयायियों के बीच घूमते हैं, और उसने ये खबर फैला दी है कि आप अपनी जमीन का बयाना लेने की सोच रहे
1: हैं। भगत, ये कैसे संभव है? मैं उस जमीन का बयाना क्यों लूंगी? मैं क्यों उसे बेचूंगी?
4: छोटी गोसाइन, हो सकता है कि कुछ अनजाने गिद्ध जमीन पर झपट पड़े और सब कुछ हथिया लें।
1: नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने महीधर को इसी काम के लिए रखा हुआ है।
3: गोसाइन, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
1: हाँ हाँ पूछो। अब समय आ गया है कि मुझे तुम सबको संतुष्ट करना पड़ेगा और हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
3: ये महीधर बाबू आपके यहाँ एक अरसे से रह रहा है, ये ठीक बात है ना?
1: हाँ, ये सही बात है, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं।
3: क्या आपको उस पर विश्वास है?
1: हाँ, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उसी ने चिकारहाटी की उपजाऊ जमीन से घुसपैठियों को भगाया और पात हल्दिया की जमीन से लगान वसूल करवाया। ये काम वो अकेला ही कर सकता था, और उसने करके दिखाया।
4: हमने सुना है कि महीधर ने एक कागज पर आपकी सारी जमीनों का विवरण और आंकड़े लिखे हुए हैं, और कुछ जमीनों के बारे में आपको पता भी नहीं था, वो भी उसने ढूंढकर निकाली हैं।
1: हाँ, ये बात सही है, इससे तो फायदा मुझे ही होगा ना।
3: माते, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपको हमारी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, पर आपने उस कागज को अच्छी तरह से देख लिया है ना, जिसे महीधर ने तमाम विवरणों के साथ तैयार किया है? क्या उस कागज की प्रतिलिपि आपके पास है?
1: हाँ, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, और वैसे भी मेरे पास बहुत कम जमीन बची है। ठहरिए, मैं अभी वो वसीयतनामा लाकर आपको दिखाती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि गोसाइन ने अपने छोटे बेटे और बहू के साथ कैसा बर्ताव किया है। अभी लाती हूँ मैं। लीजिए, ये है वो वसीयतनामा, पढ़िए पढ़िए इसे, इससे आपको सब पता चल जाएगा।
4: लाइए, मैं भगत जी को ये पढ़कर सुना देता हूँ। 24 जनवरी 1870 के अंतर्गत ये वसीयतनामा हरकांत देव गोस्वामी अधिकार, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय माधव कांत देव गोस्वामी अधिकार है, जो जाति से ब्राह्मण है, पेशे से एक धार्मिक प्रमुख है, जो जिला कामरूप पुलिस थाना पलासबाड़ी और मौजा चियानी का रहने वाला है, द्वारा तैयार करवाया गया है। मेरे दो बेटे जीवित हैं, बड़ा कृष्णकांत देव और दूसरा रमाकांत देव गोस्वामी है। छोटा बेटा हठी स्वभाव का है और गैर आज्ञाकारी है, वो निर्दयी व प्रतिशोधपूर्ण भी है, वो मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करता है, इसलिए मुझे भविष्य में उससे ये आशा नहीं है कि वो अपनी माँ की और संपत्ति की देखभाल ठीक से कर सकेगा। इसलिए मैं रमाकांत के लिए कुछ अचल संपत्ति छोड़ रहा हूँ। रमाकांत ने स्वयं कुछ जमीन अपनी मौजा में अधिग्रहित की है, इसलिए उसके नाम से मैं और भूमि नहीं छोड़ना चाहता। इसके अलावा मेरी जितनी चल संपत्ति व अन्य वस्तुएं हैं, वो मेरे आज्ञाकारी बेटे कृष्णकांत गोस्वामी की होंगी।
1: देखा देखा आपने, मैं गोसाई की बहू हूँ, और आपने मेरी हालत देखी, कितनी थोड़ी सी जमीन और धन हमारे हाथ लगा था। परिवार का कोई भी आदमी मुझे पूछने तक नहीं आता कि मैं कैसी हूँ। ऐसे अंधेरे में महीधर ने मुझे रोशनी दिखाई है।
3: माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके जमीनों की सूची कहाँ है?
1: वो सूची तो महीधर के पास है।
3: हो,
1: जैसे आपको वसीयतनामा देखने की इच्छा हुई, उसी प्रकार महीधर

0: मेरी जमीन देखने की।
1: आपने किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर तो नहीं किए?
0: हाँ किए हैं। उसने कहा था कि इस कागज पर मेरे हस्ताक्षर के साथ हर जमीन की संदर्भ संख्या उतार देगा और जिस आसामी ने अदायगी नहीं की वो उसके पीछे लगा रहेगा।
1: क्या आपने उस कागज को देखा था?
0: नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसे देख पाती और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए सारा काम मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया है।
2: अच्छा माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए, बाकी बात हम बाद में करेंगे।
1: अच्छा माँ, प्रणाम।
2: प्रणाम।
0: मेरा मन कैसे एकाग्रता से हट रहा है, ये भगत और होमगार्ड, इन्हें मेरा कौन सा भेद मालूम हो गया है? मैंने तो महीधर के साथ जो भी रिश्ता था साफ साफ बता ही दिया है, अब तो सभी लोग मेरे बारे में जगलिया तट पर तरह तरह की बातें करेंगे। हालांकि मैं कुछ भी चाहती सब हो सकता था, लेकिन नहीं, नहीं, मैं ये सब कैसे कर सकती थी? हे ईश्वर, ईश्वर इस गोसाइन पर अपनी कृपा कर, मैं टूटती जा रही हूं, पता नहीं आगे क्या होगा। हे ईश्वर मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना ईश्वर, मेरी रक्षा।

0: लिमन, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? अरे जा, जाकर मेरे लिए एक चाय तो बना दे।
1: अच्छा, अभी लाती हूँ।
0: अरे क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों रहती है? देख रही हूँ, जब से तेरा पिता भगवती होमगार्ड के हाथ से छूट कर आया है, तब से तेरा मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा है।
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: अरे अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुझे इंद्रनाथ की तो याद नहीं आ रही है? अरे उसी के कारण तो तेरा बाप छूट कर आया था, नहीं तो आज जेल में बैठकर चक्की पीस रहा होता भगवती। क्या तुझे इंद्रनाथ की याद नहीं आती?
1: पता नहीं।
0: तू चिंता मत कर बेटी, मुझे लगता है वो एक दिन जरूर आएगा और तुझे ब्याह कर ले जाएगा।
1: अरे क्यों झूठे सपने देखती हो तुम? वो हमसे भला क्यों विवाह करेंगे?
0: अरे क्यों नहीं कर सकते? मैंने गोसाई परिवार के बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा है। देख, तू चिंता मत कर, इंद्रनाथ इतना बुरा लड़का नहीं है। वो और गोसाइयों से अलग है, वो धर्म कर्म में ज्यादा विश्वास नहीं रखता।
1: हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो।
0: अरे चुप कर, तू इतनी परेशान ना हो। अरे इंद्रनाथ के साथ एक समस्या थोड़ा ही है, बीसियों चीजें जान पर लगी हुई हैं। अरे देख नहीं रही है उसकी क्या हालत हो रही है?
1: हाँ, अब तो वो अकेला ही मर्द रह गया है पूरे गोसाई परिवार को संभालने के लिए, और बड़े गोसाई भी तीर्थ यात्रा को निकल गए हैं।
0: हाँ, इतनी जिम्मेदारी का बढ़ना तो स्वाभाविक ही है ना। अरे दुर्गा बेचारी के जेवर चोरी हो गए, मारा फीटा की जमीन पर क्रांतिकारियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से छोटी गोसाइन और महीधर।
1: अब ये महीधर और छोटी गोसाइन के बीच क्या चल रहा है? आजकल बड़ी चर्चा में है ये सब।
0: अरे बस बस, कुंवारी लड़कियों को इसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए।
1: अरे तुम भी बस बात खुद ही शुरू करती हो और खुद ही चुप रहने के लिए बोलती हो।
0: देख मन, तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
1: अब
0: अरे मैंने इंद्रनाथ से दो बातें कही थी, एक तो ये कि वो तुझसे विवाह कर ले, और दूसरे ये कि अगर वो विवाह ना करना चाहे तो कूच विहार के इस अफीम चीप को पकड़वा दे, जिससे भगवती तेरा विवाह उस अफीम चीप से ना कर सके।
1: हाँ, तुम्हारे कहने पर उसने एक काम तो पूरा कर दिया, तो तुम क्या सोचती हो कि उस अफीमची को पकड़वाने के बाद वो मुझसे विवाह कर लेगा?
0: अरे बेटी, उसने पकड़वाया ही इसीलिए है कि वो तुझसे विवाह कर सके।
1: नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कुछ भी हो पाएगा।
0: अरे बेटी, तू इतनी फिकर क्यों करती है? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, इन कामों में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। तू थोड़ा संयम रख बेटी, संयम रख।
1: अरे संयम ही तो है ये। अरे अब ये बाहर कौन है? ये रस्सी पर पड़े ये कपड़े क्यों हिल रहे हैं?
0: अरे बस बस, रहने दे तू, मुझे मालूम है ये क्या ढूंढ रही है। ये गांव की बुढ़िया है
1: क्या,
0: जो पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांव की कौन लड़की व्यस्क हो गई है।
1: क्या ये यहाँ इसीलिए आई थी?

0: कहिए कौन आया है? आती हूँ, आती हूँ। अरे ये जलती हुई मशाले, इतने लोग और ये पुलिस, क्या बात है? जो भगत और होमगार्ड आए थे वो भी सामने खड़े हैं, और ये सामने मछली के जाल में लिपटा कौन पड़ा है? जरा पास जाकर तो देखो।
1: माँ, आपने जिन पर विश्वास किया है उसी ने आपको धोखा दिया।
0: क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, और ये अंधेरे में जाल में लिपटा हुआ कौन पड़ा है?
1: माँ, आपने हमें बताया था कि महीधर को आपने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके दिए थे। देखिए, क्या ये वही कागज है जिस पर आपने हस्ताक्षर किए थे? अगर ये वही है तो ये अपील करने के काम आएगा।
0: हाँ, ये हस्ताक्षर मेरे ही हैं। ये गोसाई घराने की बहू की दुर्दशा के बारे में है। असामियों से लगान नहीं मिल रहा, टैक्स कलेक्टर पहले ही धमकी दे चुका है। मैंने केवल इन्हीं अपीलों के लिए हस्ताक्षर किए थे।
1: माँ, महीधर ने तुम्हारा खून चूस लिया है।
0: क्या?
1: तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये पड़ी इसकी लाश जो भागते हुए मारा गया।
0: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। जिसे मैंने अपने शरीर का अंग माना उसी ने मुझे धोखा दे दिया, वही कट कर गिर गया।
1: गोसाइन, ये आपकी सभी जमीनों की बयाने की रकम लेकर भाग रहा था, ये नदी पार कर रहा था, तभी हमने इसे पकड़ा। इसे हम नहीं मारते, लेकिन इसने भागने की कोशिश की, तभी हमने इसे मारा। और ये रहा सारा धन जिसे महीधर लेकर भाग रहा था।
0: धोखा, इतना बड़ा धोखा, तुमने ऐसा क्यों किया महीधर, ऐसा क्यों किया? मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। अगर तुम्हें जमीन ही चाहिए थी तो मुझे कहते, मैं सभी जमीनों का पट्टा तुम्हारे नाम कर देती। मेरा तुम्हारे बाद और कौन था महीधर? बताओ महीधर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: माता, आप अपने आप को संभालिए, और आपको पता नहीं है कि आप क्या बोले जा रही हैं।
0: मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। जब विश्वास ही टूट गया तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? मैं अब किसके सहारे जीऊं, किसके सहारे? एक एक करके सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, कितनी अकेली पड़ गई हूं। हे विधाता, ये तेरी कैसी विडंबना है? तूने ऐसा क्यों किया महीधर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों?
1: छोटी गोसाइन, एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा, आपको महीधर पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। इस महीधर ने आप ही की गर्दन पर छुरी रख दी।

0: दोष देंगे हम लोग। इस धोखे के बाद तो मेरा सभी पर से विश्वास
1: है। आपके इतना अधिक विश्वास के कारण ही ऐसा हुआ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि भविष्य में सोच समझ के ही कोई कदम उठाएं।
0: अब जीवन में जीने के लिए रही क्या गया है जिसके लिए मैं जीऊं?
1: छोटी गोसाइन, अगर आप चाहें तो जमीन की देखभाल ढंग से स्वयं भी कर सकती हैं। आपकी जमीन पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर आज भी आपके प्रति उतने ही ईमानदार हैं जितने वो पहले थे।
0: बस बस, अब मुझे जमीन का कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है।
1: माता, जो धोखा देने वाला है उसको जल्दी भूल जाना चाहिए। यह तो अच्छा ही हुआ कि समय रहते इस कपटी महिधर की असलियत खुल गई। अगर जमीनों का बयाना लेकर भाग जाता तो आप इसकी भरपाई कहां से करती? अब आपकी दुर्बल अवस्था हमसे छिपी थोड़ी है।
0: देखो, जो हो गया ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में झांकने का

0: उसके लिए धन्यवाद।
1: नहीं छोटी गोसाइन, आप हमें धन्यवाद न दीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा कह के आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं।
0: अच्छा ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या हैं?
1: ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। आप शायद इस समय अकेले में रहना चाहती हैं।
2: चलो भाई, चलो, चलो, चलो,
1: चलो, चलो, हम आपके पास फिर आएंगे चलो, चलो, चलो, चलो, और महीधर की लाश को भी लिए जा रहे हैं ताकि इसे इसके गांव पहुंचाया जा सके।
2: चलो चलो
3: भाई,
1: चलो।
0: किस किस को समझाऊं महीधर कि तुम मेरे कौन थे? तुमने तो संबंध आरंभ होने से पहले ही उसे तोड़ दिया। तुमने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा महीधर, कुछ नहीं सोचा। कोई तो है जो तुम्हें अपने से भी ज्यादा चाहता है, तुम्हारी एक आवाज पर अपना सर्वस्व लुटा सकता है। महीधर, तुमने तो कभी इन बातों को समझा ही नहीं। तुम कितने कठोर निकले महीधर। तुम्हारा आकर्षण केवल थोड़ी सी जमीन पर ही सिमट कर रह गया। कितने संकुचित थे तुम महीधर, तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा। महीधर, तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा। तुमने दिखा दिया कि प्रेम और त्याग की इस जीवन में कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की 8वीं कड़ी। मूल लेखिका इंदिरा गोस्वामी, रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता, निर्देशक कैलाश भूटानी, संगीत दिया है टिन्नू ने, ध्वनि मुद्रण राजेंद्र नाथ। भाग लेने वाले कलाकार हैं वीना होरा, हर्ष बाला, कुमकुम जैन, बीएल टंडन, संदीप शर्मा और मंजू मैनी। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे दक्षिणी कामरूप की गाथा की अगली कड़ी में।

दक्षिणी कामरूप की गाथा। अभी आपने सुनी इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी। धरोहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7।

मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। 11:30 हो चुके हैं, ये समय है मन भावन का।

मन भवन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीत माला। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार।

दोस्तों, क्या है हमारी ज़िंदगी? देखा जाए तो एक मौसम से दूसरे मौसम का सफ़र है। हम सब की ज़िंदगी में अलग अलग मौसम अलग अलग रंग लेकर आते हैं। हर एक मौसम की अपनी अदा होती है, अपना मिजाज होता है और अपना असर होता है। जो बारिश प्रेमी जोड़ों को आनंद देती है, वही बारिश बिछड़े प्रेमियों की आंखें भिगो जाती है। पतझड़ में गिरते पत्ते किसी को उदास कर जाते हैं तो किसी को यादों के सफ़र पर ले जाते हैं। बसंत में खिलते फूल एक नए जीवन, एक नए आनंद का संचार करते हैं। मौसम का ये उतार चढ़ाव, ये खट्टा मीठापन हमारी ज़िंदगी की एक रास्ता को हटाकर हमें एक नए उत्साह का संचार करता है और कभी कभी हमें यादों के हसीन सफ़र पर ले चलता है। कुछ आप हसीन हैं, कुछ मौसम रंगीन है। तारीफ करें या चुप रहें, जुर्म दोनों संगीन हैं।

भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

जब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शानी से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

मौसम केवल नाम नहीं, कोई एहसास नहीं, बल्कि मौसम नाम है बदलाव का, जो ये बताता है कि जो आज है वो कल नहीं था और कल होगा भी नहीं। पल पल रंग बदलती जिंदगी को बयां करते हैं ये मौसम, पर लोगों के पल पल बदलने से मौसम की तुलना भी की जाती है। मौसम का बदलना तो हम सभी को अच्छा लगता है, पर लोगों का मौसम की तरह बदल जाना हमें रास नहीं आता। हमें तकलीफ होती है तब जब हमारा कोई अपना बदल जाता है। जब जीवन में कोई खास आता है तो हम उससे बस यही उम्मीद करते हैं कि बदलते वक्त और बदलते मौसम के साथ कहीं वो भी ना बदल जाए। अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, लौटकर फूलों में वापस नहीं आती खुशबू।

मौसम इंसान को कुदरत की एक देन है और हर एक मौसम का अपना अलग मज़ा है। कभी जिस धूप के लिए हम तरसते हैं तो कभी उसी धूप से बचने की हम कोशिश करते हैं। कभी पतझड़ का मौसम आता है तो कभी बहारें रंग बिरंगे फूल खिलाती हैं। हर एक मौसम में हम खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं, लेकिन इन मौसम के साथ जीना हमें बहुत अच्छे से आता है। बदलते मौसम बदलते वक्त की पहचान होते हैं। कुदरत का मौसम तो बदलता रहता है, पर कुछ मौसम ऐसे भी होते हैं जो हम इंसानों के मन से चलते हैं। कभी उदासी का मौसम होता है, कभी यादों का मौसम होता है, कभी हम खुशी से झूम रहे होते हैं, खुशियों की बहार होती है, तो कभी गम की बौछार होती है। हर एक बदलते मौसम के साथ हमारी बहुत सारी दुआएं जुड़ी होती हैं। जो प्यार करते हैं उनके लिए अलग अलग मौसम अलग अलग रंग लेकर आते हैं। जो साथ होते हैं वो ये चाहते हैं कि ये प्यार का मौसम कभी ख़त्म ना हो, और जिनका कोई साथी नहीं है, जिन्हें साथी का इंतज़ार है, वो ये दुआ करते हैं कि जल्दी ही उनका साथी उन्हें मिले और उनकी ज़िंदगी में भी मिलन का मौसम आए।

अगर कोई साथी जीवन में आ जाए तो हर मौसम खुशनुमा हो जाता है, हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर एक मौसम प्यार का मौसम बन जाता है, जिसमें कोई दुख किसी आंसू के लिए कोई जगह नहीं होती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते जाते हैं, पर हर एक मौसम बहार का ही मौसम बना रहता है। तेरे आ जाने से बहार आ गई है, हर तरफ तेरी खुशबू खुशगवार आ गई है। वीरान था आलम मेरी तमन्नाओं का, मेरी जिंदगी में फिर एक बार बहार आ गई है।

दोस्तों, हमारी तो यही दुआ है कि जो भी समय हो, जो भी मौसम हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। और हमारी दोस्ती का ये मौसम हमेशा यूं ही बना रहे, इसमें हमेशा बहार रहे। और इसी दुआ के साथ गीतमाला कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।

0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
1: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
2: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
1: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
0: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
1: जागिए और जगाइए,
2: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
0: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
1: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। गीत आपके नाम कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा।

किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन, जसपुर उत्तराखंड से श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, सरगुजा मिन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डॉली थापा, डोंडी लोहारा से सुमित मोगा, देव मोगा, राधिका और कबीर मोगा, जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी, बेबी जोई अजनबी, डॉली बेलदार, छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी गौडिया, करजत मुंबई से राधिका डोमेन, प्रभा, आरती और डोली डोमेन, बिहार स्टेट डुमराव से श्रोता हैं आसमा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी और वलीउल्ला अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौसीन अंसारी, आसना पर अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, कटहल हैदराबाद से गोपाल नाई और उमा महेश्वरी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, भोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, नूरमहल महसोल सीतामणि बिहार से मुसरत जहानाज, तलहत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज ऋषि और कृष्णा गोटके, पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलावेन और राजेंद्र जी शाह, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवासी लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुपिंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, ग्राम बनबगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश शर्मा, आशा शर्मा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा, आप सभी के नाम ये गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

गीत आपके नाम कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के फरमाइश पर तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, शिवाय और प्रियंका राठौर। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता

शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कोआत बिहार से जफर शेख जफर हसन और नरगिस जफर, कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा प्रथमेश, पांडुरंग कुमार, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कर्मनिशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी और नासिर अंसारी, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, प्रिंस आकाश सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमाक्ष, संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, नई बस्ती गंजनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरी कौर, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और आजम खान, सनावत से शेख मूसा मोहसिन। आप सभी के नाम ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, फिल्म का नाम है आशिकी।

आशिकी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत साधना सरगम की आवाज में। दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। कमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। मोहल्ला बारादरी महमूद खां, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शायना काजल, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। दुर्गा चौक जूना पार्टी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम हीरा लाल, साहिल सुमन बड़ोले, विशाल हरिओम और भावना बड़ोले। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। मानीवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत, अंकिता भटकर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर पांधा और जी एस रामगढ़िया। पटेल

नगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया। गणेशपुर गंजुंडवारा एटा से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, सैमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बीबी मुस्कान। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। महेश गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। मोहल्ला अलवायान शेरकोट बिजनौर से श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। रेलवे रोड गंजुंडवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। आप सभी के नाम ये गीत साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

कसूर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना साधना सरगम की आवाज में। गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। सनम फिल्म का ये गीत हमने किया है इन सभी श्रोताओं के नाम। तहसील रोड गंजुनवारा से के एच राही, गुड़िया बेगम वकील प्रेमी और हमाद जमील, शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल, पटियाली रोड गंजुनवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा, सनावत ग्राम खंगवाड़ा श्री दगड़ू जी सेन, धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, कलाबाई सावित्री, निशा सेन, आयुष दीपांशु सेन और आरुषि लक्षिता सेन, मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार, सोनी और कमल किशोर शाह, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा, उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज, कमला रानी और भानु प्रकाश, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशु नारंग और सुरेश नारंग, कटोरा तालाब बक्सर से रेशमा नारंग, वली राम नारंग और सुल्तान नारंग, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन अंसारी और शमसुल कमर राही, बन्ने बुजुर्ग पीला पटलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुभान और फिरोज खां, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, साथ हैं आफरीन शमीम अंसारी, शाहीन तूबा, कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से श्यामला प्रकाश, मजार चांदशामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी।

अंतर आई मीन और आशु भी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांचल राय, आप सभी के नाम ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है सनम।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में, सैनिक फिल्म का ये गीत किया है हमने अपने इन सभी श्रोताओं के नाम। फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप जटोलिया, ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी, असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी और नसीम खान, सुरसंगम रेडियो ग्रुप से जगदीश जोशी, मंजुलाबेन जोशी, हितेश कुमार जोशी, हिमा जोशी, हितेश कुमार जोशी, उमरखेड़ से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन और अब्दुल सलाम रायन, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद साजिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, गंजुनवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, शिवापुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया और ईशु बाबा, गांव जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन, अमीना पटेल, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से अशोक जाटा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप और गौरांग येले, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू और तरुण यादव, बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शाइना काजल और शहजाद अली, मोहम्मद मोहल्ला झंडा रामपुर से मोहम्मद असलम फूल भाई और नसरीन जहां, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी सहारनपुर से, गंडुनवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाज शेख और दानिश शेख, आप सभी के नाम ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है सैनिक।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सलेहा खातून, गुड़िया खातून, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा, चंद्रनगर कॉलोनी से कौशल्या जोशी, प्रमिला जोशी, सोनाली जोशी, सहारनपुर से सुरेश नारंग जाधव, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले पुणे से अजय सोनबड़े, करिश्मा अविका और विशाखा सोनबड़े, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, महेश्वर नंद्रा मध्य प्रदेश से शंकर सेन, जितेंद्र काना, संगीता सेन, लीला सेन, जय भूरे भाई पटेल और खेड़ी बड़वा, छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव और टुक टुक, चंद्रनगर सहारनपुर से आशा डोमिन, सोनाली, सुरेश पथिक, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, उमा और प्रभा रानी, आप सभी के नाम ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है मेहरबान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का एक बजने वाला है, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। एक बजकर 1:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सुनहरा दौर ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 2:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे 2010 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00। आज शाम के साथ युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर। 6:10 पर आप आनंद लेंगे।

चित्रपट संगीत का। किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा 6:20 पर। 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम छांव बरगद की।

सुगम संगीत में 7:31 पर आज कलाकार होंगी डॉक्टर अंकिता। आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत और भजन। व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे 8:00। अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती अब तक पहुंचेगा 9:30 पर दिल्ली केंद्र के माध्यम से, और दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुआ चाहते हैं। इलाकाई खबरें थोड़ी ही देर में लखनऊ से रिले होंगी।

0: पहले मरहले की खुद गिनती शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मरदमशुमारी के पहले मरहले को ऑनलाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी अमल है और इसमें हर शहरी की शिरकत इंतहाई जरूरी है। इस दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना मरदमशुमारी फॉर्म ऑनलाइन भरा। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तावन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मरदमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुद शुमारी मरदमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है। ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है। दो शिफ्टों में होने वाले इस इम्तहान में तकरीबन 4,64,605 उम्मीदवार शामिल होंगे। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि तमाम इम्तहान मराकज के कमरों और अहम मकामात को AI पर मबनी CCTV कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें जिला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। इम्तहान के तकद्दस से समझौता करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में खानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को खत्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाजाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: महकमा मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कई जगहों पर तेज हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी रेनू तिवारी। अगर आप भी हमसे करना चाहते हैं बात तो डायल करें, हमारा फ़ोन नंबर है 0595 2324326।

0: और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश देवी।
0: अविनाश जी।
1: जी
0: अविनाश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और आकाशवाणी रामपुर का कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। खासकर देखिए, जो आकाशवाणी का 90 साल पूरे होने पर जो दो भागों में जो दो कार्यक्रम प्रसारित हुए थे, वो मुझे बेहद ही पसंद आया था। उसमें मैंने भी अपना वहाँ पर हिस्सा लिया था और सुन के बहुत अच्छा लगा। ईमेल वाला कार्यक्रम था, वो भी अच्छा लगा था। आपके पत्र मिले, ये भी कार्यक्रम अच्छा लगता है। तो खासकर रामपुर से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और खासकर देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम जो है, ये पहले 1:30 बजे आता था, लेकिन आपके लिए 15 मिनट आगे कर दिया गया, यानी कि 1:15 आता है, तो बहुत अच्छा लगा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी हमेशा अपने श्रोताओं के साथ रहता है, और श्रोताओं के साथ आकाशवाणी ने ये सफर तय किया है 90 वर्ष का। आज आपका फोन लगा है, हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: तो आज मुझे सुना दीजिएगा, मूवी का नाम है दिलवाले, और इसमें गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में, 7वां जन्म में तुझे।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो रामपुर हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। गफ्फार भाई पहले ये बताइए कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल हैं?
0: यहाँ भी सब ठीक है। आज हेलो फरमाइश में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है बेराग और गाने के बोल हैं सारे शहर में आपका कोई नहीं है, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: बिल्कुल।
1: सबसे पहले मेरी वाइफ है राजिया खान, सिमरन खान, इरफान खान, शाहिदा परवीन, शानूर अंसारी, शबनम अंबासी, मसूद हुसैन साहब, जीना तमान, गुलशन, आकाश रस्तोगी, पम्मी पत्तेबाज और हबीब अहमद, संदीप सक्सेना, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ जिला संबल ग्राम सिरसा से।
0: सचिन आप क्या करते हैं?
1: मैम अपना किराने की दुकान है और अपना खेती बाड़ी भी होती है।
0: जी खेती बाड़ी भी आप करते हैं। इस समय मौसम जो है वो पल पल बदल रहा है, कभी मौसम ठंडा होता है कभी गर्मी बढ़ती है, ऐसे में खेती के लिए कैसा है ये मौसम?
1: जैसे यदि मौसम सही रहता है, बारिश हो जाती है तो फिर थोड़ा फायदा भी होता है, और यदि ओले ज्यादा पड़ जाती हैं या पानी ज्यादा हो जाता है फसल पे पड़ जाता है तो उससे थोड़ी हानि भी रहती है।
0: जी आज आपका फोन। हाँ जी,
1: जैसे इस समय अभी ईख लगी हुई है तो ये फायदेमंद है हमारे लिए, ये जो अभी पीछे बारिश हुई थी इससे अच्छा है।
0: जी आज आपका फोन लगा है। हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का नाम रहेगा हाँ मैंने प्यार किया, और गाने के बोले रहेंगे हम प्यार हैं तुम्हारे, और कुछ नाम है
0: बिल्कुल
1: हाजी गफ्फार भाई हैं और आसिफ चौधरी हैं और शबनम अब्बासी जी हैं और आप रहेंगे और सभी श्रोता रहेंगे मैम और सतीश जी हैं प्रणुका वास्ते।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, मैं सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। हमारा पहली बार लगा है आपके जगह रामपुर में।
0: पहली बार आपका फोन लगा है, कैसा लग रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, आपका भी वेलकम करते हैं कि हम तो रामपुर सुनते रहते हैं, लेकिन मेरा कॉल पहली बार लगा है इधर आपके जहाँ।
0: आज आपका पहली बार कॉल लगा है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।
1: जी मैडम, तो गीत हमें सुना दीजिए, हमराज पिक्चर का
0: बिल्कुल
1: गीत के बोल है, तुम अगर आगा वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, महेंद्र कपूर जी की आवाज में। और
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे
1: ये
0: हैं।
1: रहेगा और आपको ये डेलीगेट रहेगा।
0: बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह
1: जी, बिल्कुल
0: जी। हमारी आपसे शायद पहली बार बात हो रही है आज।
1: जी हाँ, आपसे पहली बार बात हो रही है रेणु जी, लेकिन मैं बताऊँ आपको, मैं आकाशवाणी रामपुर सुनता रहता हूँ।
0: जी आप हमारे नियमित श्रोता है और फोन के जरिए ज्यादातर जुड़ते हैं।
1: जी बिल्कुल हाँ, फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने एक रजिस्टर भी बना रखा है जहाँ पर भी जितनी भी आकाशवाणी मेरा कॉल लगता है ना
0: जी,
1: जो उसको मैं एक नोट करके रखता हूँ। अभी तक मेरे 260 कॉल हो चुके हैं 2026 में, मतलब 1 जनवरी से लगाकर आज तक।
0: बहुत ही किस्मत वाले हैं आप कि आपके सभी स्टेशन पे लगभग कॉल लग जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: वरना हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि लगातार वो कॉल लगाते रहते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता।
1: जी बिल्कुल, मैं ना प्रयास करता रहता हूँ ना तो कॉल लग ही जाता है।
0: बिल्कुल, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनवाते हैं आपको?
1: जी फिल्म का नाम है गीत और गाने के बोले तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश।
1: जी। हेलो फरमाइश। सबसे पहले तो रहने दुआरी जी आपको और तमाम प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों को मेरा मोहब्बत भरा आदाब।
0: आदाब।
1: मोहल्ला थाना टीम अंगूर वाली मस्जिद रामपुर से मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ मैं।
0: आदिल भाई, बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे बात हो रही है आज।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा ही लगता है जब थोड़ा सा गैप देके या कुछ दिनों बाद मुलाकात हो तो बात करने में भी अच्छा लगता है और श्रोताओं को भी अच्छा लगता है और हम खुद अच्छा इस बात का लगता है कि नए नए श्रोता आपसे जुड़ते हैं, दूर दूर दूर दराज से अपने दिल की बात कहते हैं, अपनी फरमाइश बताते हैं और उनकी जब दिल के जज्बात हम सुनते हैं कि वो कितना खुश होते हैं जब कॉल आपके आकाशवाणी रामपुर में लगती है उनकी, तो हमें खुद भी इस बात खास होता है, अच्छा लगता है। हम इसलिए खुद ही गैप दे के ही बात करते हैं मैम।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि नए श्रोताओं को मौका मिले। वहीं आदिल भाई, कुछ हमारे श्रोता ऐसा भी करते हैं कि कई बार नाम बदल कर हमको कॉल करते हैं।
1: ये उनकी पुरानी आदत हो चुकी है। आपका हमारा कह के कोई फायदा नहीं है, ना वो बदलेंगे अपनी आदत और ना उनकी आदत कभी जिंदगी में जाने वाली है।
0: जी, आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि अगर एक बार कॉल लग गई है तो
1: अच्छा,
0: दूसरे श्रोताओं को चांस दें।
1: देखिए आकाशवाणी रामपुर से अब से नहीं 12-13 साल जुड़ा हुआ हूँ और काफी मतलब मैंने कुछ आकाशवाणी रामपुर से सीखा है, लेकिन मैं इस चीज का आज तक कभी समझ नहीं पाया हूँ कि नाम बदल के कॉल करने में फायदा क्या है।
0: फायदा कुछ नहीं है, दूसरे श्रोता हमारे साथ जो है वंचित रह जाते हैं
1: सुनने वाले। देखिए आप तो एक मिनट को उनकी आवाज नहीं पकड़ पाएंगी
0: जी,
1: और हम बहुत तेज पकड़ लेते हैं क्योंकि हम तो हर वक्त आकाशवाणी रामपुर सुनते रहते हैं, फोन इन प्रोग्राम सुनते रहते हैं, उनसे बात भी होती रहती है, तो हम इस बात का अंदाज लगा लेते हैं कि ये कौन सा शो होता है, लेकिन हम खुद नहीं कहना चाहते क्योंकि इंसान नजरों में गिरता है इस चीज से।
0: बिल्कुल, आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि जिनकी कॉल लग गई है वो नाम बदल के हमें कॉल ना करें।
1: नहीं नहीं, नाम बदल के बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आप भी कृपया शिकायत का मौका ना दें,
0: बिल्कुल
1: किसी श्रोता को नाराजगी हो या किसी अनाउंसर को इस चीज से दिक्कत ना।
0: आज आपका फोन लगाया हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: फिल्म बनाने इतिहास गाने के बोले हैं दिल की कलम से।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
1: कुछ नाम बोलना चाहूंगा।
0: बिल्कुल,
1: मेरी वाइफ है ज़ैनब खान अब्दुल्ला खान, छोटी बहन आसिफा परवीन, मम्मी आसिफा परवीन, बड़े भाई मोहम्मद आलम खान, पापा मोहम्मद आजम खान, बस यही लोग हैं।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी करने लीजिए, सुनिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार
1: मैं अनिल कुमार बात कर रहा हूँ मैडम, भटपुरा तारण से। बढ़िया
0: जी। अनिल जी कैसे हैं आप?
1: मैम, बढ़िया। आप बताओ मैम, कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं। आज आपका फोन लगा है और ये इस कार्यक्रम की आखिरी कॉल है,
1: जी
0: तो पहले तो ये बताइए कि कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, बढ़िया। आप बताना, ठीक है?
0: जी, आज आपकी पहली बार हमसे बात हो रही है क्या?
1: नहीं, मैं तो मेरा कई बार आपसे बात लग जाता है मेरा फोन।
0: जी, काफी समय के बाद हमारी आपसे बात हो रही है।
1: सीनियर के बारे में मैडम बात करेंगे आप?
0: बिल्कुल
1: मैंने आपकी आवाज पहचान ली मैडम।
0: जी, आज आपका फोन लगा है। हेलो फरमाइश में कौन सा गीत
1: हाँ
0: सुना दें
1: जी,
0: आपको?
1: फिल्म का नाम है मुस्कान और गाने के बोल है जाने मन चुपके चुपके,
0: जी,
1: ये गाना सुना दीजिए मैडम।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए
1: ओके
0: सुनिए।
1: मैम, थैंक यू।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

श्रोताओं, आज हमारा और आपका साथ यहीं तक। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात के वादे के साथ। आज रेनू तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: organize the dialogue in collaboration with the Indian Council of World Affairs and the Indian Ocean Rim Association Secretariat. The Somnath Amrit Parv 2026 is being celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The five-day celebration highlights the historic significance of the temple and celebrates its enduring legacy. To commemorate this event, Prime Minister Modi is visiting the Somnath Temple on Monday.
1: The celebration honors the enduring legacy of the Somnath Temple. It marks 1,000 years since the first recorded attack on the Somnath Temple in 1026. Somnath Temple holds a sacred place as the first among the 12 Adi Jyotirlingas of Lord Shiva. Somnath Temple has been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Somnath Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbhabhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: On to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts raced to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
3: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु

0: अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टूडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है, उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक

0: संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: इंडिया हैज ट्रेडिशनली हैड
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स और फूड हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए

0: इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2010 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत रेखा भारद्वाज के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है डेढ़ इश्किया।

रेखा भारद्वाज और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी डेढ़ इश्किया। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आइए अब सुनते हैं ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है इश्कज़ादे।

अभी आपने सुना फिल्म इश्क शादी में श्रेया घोषाल को। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक की आवाजों में। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

0: ए दिल है मुश्किल। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह बादशाह और जोनिता गांधी की आवाज़ों में। और आइए अब सुनते हैं ये गीत ममता शर्मा और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हाउसफुल।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।

हाउसफुल टू। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना ममता शर्मा और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। और कार्यक्रम के अंत में ये गीत सोहेल सेन, श्रेया घोषाल, सुखविंदर और शादाब की आवाजों में। फिल्म का नाम है हाउसफुल फोर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में सुने आपने 2010 के दशक के गीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण

खान, अनिल नागर और उनके परिवार के दोस्त, और ये हैं विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अढ़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले, और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, यह आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता

0: भगवान से चाहता हूँ।
1: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है। कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
1: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब, अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं, शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं, बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं, इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है, उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे, मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है, सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल, तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद, अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है, लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया, वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है, साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है, दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वो छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो, 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है, अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है, आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है, डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं, और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना, आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने

0: पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूं तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूं, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: श्रृंगारम, श्रृंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भागकर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते, जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा।
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: श्रृंगारम ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने?

0: सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
1: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
0: अच्छा,
1: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
0: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
1: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
0: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
1: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
0: बेचारा फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
1: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
0: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
1: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
0: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
1: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
0: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
1: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
0: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे, जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम?
0: अरे
1: अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने
0: अरे
1: काम
0: अरे
1: से
0: अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जी। जवान लड़की है। और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे, वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे, मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है या?
0: अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम

0: ছোটবে আমি
1: कोई नहीं बताएगा तुझे। तीन बार एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
0: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तू हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
1: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चारों हाल उधेड़ कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
0: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
2: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
2: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
2: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
2: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है?
2: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
2: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
2: अरे अरे बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब ओह पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी मां से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी मां के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी मां के प्यार के लिए तरस रहा था। मां जी।
4: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
3: मां जी आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
4: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।

0: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे, खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
2: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
2: मुहूर्त माना,
1: तो क्या बात,
2: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
2: जी।
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
2: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ, हाँ।
2: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संग, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी।
2: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई।
1: अच्छा,
2: मुझे
1: अच्छा।
2: बोली तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी।
1: क्या बात।
2: बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
2: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
2: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये।
1: हाँ,
2: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
2: हाँ जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
2: हाँ जी,
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
2: जी।
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है।
2: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
2: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे
1: हाँ।
2: वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात
2: है, आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
2: ऐसे मैं
1: गाया है।
2: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
1: जी,
2: उसकी झलक
1: हाँ।
2: उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी,
1: जी
2: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
1: अच्छा।
2: को। जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं।
1: जरूर।
0: बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं,
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई,
0: अच्छा
1: मुंबई,
0: अच्छा मुंबई में ही,
1: गिरगांव में, गिरगांव
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना
0: जो
1: भी वहां
0: खास
1: था।
0: मुंबई जैसे
1: सब
0: कहा
1: चाल
0: जाए।
1: थे सब
0: जी जी
1: ऐसे,
0: जी जी
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ हाँ
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर के
1: आती
0: सब
1: थी,
0: काम
1: सब
0: किया करते
1: मिलकर
0: थे।
1: काम करते थे,
0: वाह,
1: बहुत मजा आता था। लेकिन
0: हाँ
1: पूरा
0: हाँ
1: एक चाल कुटुंब जैसा था,
0: जी
1: और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: हाँ
1: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा
1: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
0: हाँ
1: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
0: अच्छा
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी
1: और
0: जी
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
0: ओ
1: अगर दादर में क्लास होता
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
0: अच्छा
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह
1: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
0: जी
1: वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
0: हाँ
1: दिल्ली में,
0: हाँ
1: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा।
1: संगीत शारदा,
0: जी जी
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: ओ
1: जी, मेरी
0: अच्छा
1: आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पुरुष के गायक के लायक थी, और
0: अच्छा
1: हाइट भी अच्छी थी,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी जी
1: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: चूंकि ये महिला
1: के
0: विश्वविद्यालय है
1: महिला विश्व
0: तो
1: नहीं,
0: सारे।
1: वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
0: अच्छा
1: तो वो हमने उधर किया
0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
0: हाँ
1: दिल्ली गई यूथ
0: क्या बात।
1: फेस्टिवल के,
0: अच्छा अच्छा
1: बाकी
0: अच्छा
1: फ्रेंड्स वगैरह थे
0: हाँ
1: साथ,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था,
0: क्या बात है।
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर।

0: वाह वाह, क्या
1: जितना
0: बात है।
1: लिया था।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब
1: बिल्कुल,
0: स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी
1: नहीं करती
0: स्टेज मंच पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं,
1: राइट राइट,
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका यहाँ
1: भूमिका
0: इस नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी।
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था,
0: जी,
1: हम
0: जी।
1: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने,
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में
0: जी।
1: कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है नहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
0: हाँ।
1: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने
0: जी,
1: म्यूजिक लेके,
0: जी, जी।
1: तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की,
0: हाँ।
1: तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है,
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई 16 साल की, तो 58 को शादी हो गई। फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
0: जी
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में,
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: वो
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी,
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ।
1: जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
0: अच्छा।
1: बच्चों को।
0: हाँ, हाँ।
1: तो 62 में मैंने एमए किया फिर,
0: वाह।
1: और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस
0: जी
1: क्लब का,
0: जी
1: तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे, और मुझे आए उन्होंने पूछे कि आप चलेगी, कि हमने चलेगी कूदते
0: दौड़ेगी
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, तीन
0: क्या बात,
1: महीने का वो टूर था हमारा,
0: क्या बात है।
1: और दो बेटियां, एक
0: हाँ,
1: चार
0: हाँ,
1: साल
0: हाँ.
1: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की,
0: हाँ,
1: मैं बिंदास चली गई, और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
0: हाँ, हाँ.
1: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
0: जी जी
1: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके
0: जी
1: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
0: अच्छा,
1: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा
0: क्या
1: आया
0: बात
1: टूर
0: है।
1: में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद
1: तलत
0: किया,
1: साहब तो
0: तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने
1: ओके
0: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
1: मराठी में गाने थे।
0: जी
1: हाँ
0: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया,
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गई।
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा,
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था
0: जी
1: फिल्मों के
0: जी
1: लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी,
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, वो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम।

0: ऐसा करते थे
1: अच्छा
0: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
1: हाँ
0: किया
1: हाँ
0: उनको,
1: जी जी
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे,
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
1: हाँ
0: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कहा कि आपने तीन चार गाने गा के ये
1: हाँ
0: लोगों सामने से सुनते बैठू,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस
1: है।
0: बारे। रफी साहब को
1: पर किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं गाया
1: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन सा
0: जरूर
1: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों
0: टीका
1: के
0: टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों का टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इसमें किसने कष्ट है या इसमें

0: इतनी कठिनाइयां हैं,
1: जी
0: तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है,
1: अच्छा
0: हाँ मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
1: हाँ
0: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
1: जी
0: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
1: अच्छा
0: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
1: जी
0: प्रोग्राम
1: जी
0: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक छोटा छोटा
1: अच्छा
0: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
1: हाँ हाँ
0: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में,
1: हाँ अच्छा
0: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
1: ओहो
0: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
1: क्या
0: है,
1: बात है,
0: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया
0: तो
1: पर
0: सोशल मीडिया पे,
1: ओहो हो
0: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: क्या
0: हूँ।
1: बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
1: हाँ
0: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो, वो
1: हाँ
0: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
1: जी
0: पहले
1: जी
0: गाने,
1: जी
0: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
1: हाँ हाँ
0: जाती है।
1: हाँ
0: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
1: बराबर
0: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
1: जी
0: क्लासिकल
1: जी
0: म्यूजिक का।
1: हाँ
0: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ, ये
1: जी
0: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
1: ओहो
0: हारमोनियम पे सिर्फ
1: क्या बात है,
0: भेजे,
1: अच्छा
0: कभी
1: अच्छा
0: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी
0: साथ
1: जी
0: गाए,
1: जी
0: लेकिन बहुतर गाने मैंने ऐसे ही गाए, बजाता है,
1: जी
0: मुझे भी
1: जी
0: अच्छा
1: हाँ, तो
0: लगता
1: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: है। नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
1: अच्छा अच्छा
0: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
1: हाँ
0: याग्निक
1: हाँ
0: का,
1: अच्छा
0: मोह मोह के धागे,
1: मोमो के धागे दम लगाकर है शायद इस फिल्म का
0: दम
1: गाना
0: लगा के है
1: है।
0: शायद
1: जी
0: उसका,
1: जी ये लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ
1: हारमोनियम पे,
0: मोह
1: तो
0: मोह के है। और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह से
0: है, ये
1: गाती
0: आपका
1: थी
0: हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी की,
0: नकल किसी की नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं किया आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ,
1: हिदायत के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी का
1: हिदायत।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता
1: नकल, नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: है। जी जी जी जी
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट्य, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो आवाज
0: बिल्कुल
1: डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से, तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल,
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते,
1: चौबड़े में।
0: क्या बात है। तालीम बहुत जरूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, ये जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट, और
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज, वो करती
0: हाँ
1: हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं
0: मैडम।
1: करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल न नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल,
1: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: खैर बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे
0: सही बात,
1: ना।
0: बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र,
0: तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा,
1: हाँ बड़ौदा
0: हाँ
1: में, मन्नादा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपने आवाज में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना,
0: हाँ
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में।
0: हाँ
1: बहुत ही
0: अच्छा।
1: उनका

0: और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
1: हाँ
0: शील सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी,
1: बिल्कुल,
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी।
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा
0: बहुत, तीन बार
1: होगा
0: हुआ ठीक, चार बार हुआ, इतने बार ये अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के,
0: लाइन
1: क्यों
0: में,
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें।
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54, दिस मॉड्यूलेशन
1: हाँ हाँ
0: फॉर द, कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो, बांबू से घर बांबू से दार, बांबू ची जमीन पिरुड़ी शार, बांबू से घर बांबू से दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबू चा घरात आहा आहा, स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवीत राहील पापा पापा तुलानी मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो
1: और
0: क्या
1: वाह वाह,
0: क्लासिकल
1: मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते
0: सिंगिंग,
1: हैं,
0: जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ
1: मगर प्योर क्लासिकल
0: उनका
1: गाने
0: प्योर
1: जिनको कहा
0: क्लासिकल
1: जाए, जो
0: बहुत,
1: लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे,
1: जी बिल्कुल
0: क्लासिकल
1: बिल्कुल,
0: गाने हैं ऐसी बात नहीं,
1: बहुत से दिए
0: लेकिन
1: हैं।
0: उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या
1: जी
0: भारीपन था आवाज
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो उस पे बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी जी
0: मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, ऐ मेरे प्यारे वतन,
1: वाह
0: बहुत अच्छे, थोड़ा सुना दो।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो
0: जी
1: भी एक
0: बिल्कुल
1: अंतरा
0: बिल्कुल,
1: है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से
0: सीने से
1: लग
0: लग जाता
1: जाएगा
0: है
1: तो,
0: तो
1: और कभी नन्ही सी बेटी बन के
0: बनके।
1: आ जाता।
0: वाह वाह
1: बहुत अच्छी
0: बहुत बहुत ही
1: लिखावटी
0: संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको
1: जी
0: मंच पर गाने का मौका
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ
1: रफी
0: आपकी
1: साहब तो मेरा
0: यादें।
1: सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके
0: अच्छा
1: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
0: हाँ हाँ
1: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए
0: ओहो
1: रफी साहब के
0: क्या
1: साथ।
0: बात। हाँ
1: और जो उनसे सीखा है ना,
0: जी जी
1: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
0: ओहो
1: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
0: वाह
1: और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक
0: जी
1: पत्रकार परिषद थी,
0: हाँ हाँ
1: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
0: जी
1: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते?
0: जी
1: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
0: हाँ
1: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और
0: ओ
1: क्या करूँ, और
0: क्या बात,
1: किसमें हाथ क्यों डालूँ मैं?
0: विनम्रता की हद है।
1: हद है, हद है।
0: ओ हो
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: वो
0: जी
1: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
0: हाँ
1: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
0: हाँ
1: तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
0: जी
1: है।
0: क्या बात, वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: अच्छा
0: अब
1: लगा
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं,
1: जी।
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे
0: हाँ
1: सब पसंद, कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
0: विक्टोरिया
1: मिल
0: नंबर
1: गए
0: दो
1: हो,
0: सौ तीन
1: हाँ,
0: हाँ जी हाँ जी
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी
1: हाँ,
0: हंसते
1: हंसते
0: जख्म
1: जख्म,
0: जी जी
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: हंसते
1: और
0: जख्म फिल्म
1: हाँ
0: का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 major surgeries, उसमें 2 heart bypass, 2 aneurysm करके है और 2 kidney stone की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाए था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओ,
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था। तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: मैं
2: लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं, जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं, कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास, मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते
2: उन्होंने
1: हुए
2: गाते
1: देखा,
2: देखा
1: है।
2: तो उन्होंने
1: तो वो
2: भी
1: गाती
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कैसा क्यों आए ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे। तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गति लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: भारती के

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

श्रोताओं नमस्कार। आज शाम कार्यक्रम के साथ मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं, कहा जाता है कि जहां मन को सुकून मिले वहीं अपनी बगिया है, चाहे वो फूलों की हो या फिर यादों की, क्योंकि यादें हमारे बीते दिनों की कहानियां होती हैं। सोचिए वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब हम सुबह स्कूल ना जाने के लिए क्या क्या बहाने बना लेते थे, खेलते खेलते आपस में लड़ने लगते थे, कभी मम्मी से तो कभी दादा दादी से हर छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेते थे, तितलियों के पीछे भागना, बारिश के पानी में कागज की नाव बना कर तैराना, कितना अच्छा लगता था। सच में बचपन के दिन वो बहुत सुहाने थे।

सच में श्रोताओ, बचपन की यादें हम भुलाए नहीं भूलते। पापा की उंगली पकड़कर चलना हमने सीखा, दादा दादी से परियों की कहानियां हमने सुनी, माँ की लोरियां सुनकर हम सो जाते थे। इतना कुछ माँ बाप से हमने सीखा और हमारी सफलता भी माँ बाप की मेहनत से ही पूरी हो सकी। तो फिर माँ बाप का कर्ज हम कैसे उतार सकते हैं? आज यदि हम आगे बढ़े हैं, कुछ मुकाम हमने पाया है, तो माँ बाप की कड़ी मेहनत और उनकी परवाह से हमने सब कुछ पाया है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसलिए अब हमारा फर्ज भी बन जाता है कि उनकी सेवा करें, उनका ख्याल रखें और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखें। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

श्रोताओं, माँ बाप की सेवा हमारा दायित्व है। उनकी वजह से ही हमने अपना हर मुकाम पाया है। माँ बाप वो होते हैं जो बिना शर्त और के हमें प्यार करते हैं, हमारी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इसलिए उनका ख्याल, उनकी बातों का मान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का कड़वा सच है श्रोताओं, कि उम्र के जिस पड़ाव में आज वे हैं, कल हमें भी आना है। और जैसा आज हमने बोया है, वैसा ही कल उसका परिणाम हम तक पहुंचेगा। कहते भी हैं कि जैसी करनी वैसी ही भरनी।

तो श्रोताओ, यदि आज की शाम आप कुछ बैठकर सोच रहे हैं तो कुछ पल बुजुर्गों के पास भी बैठने की सोचनी। हर चीज़ इंटरनेट पर नहीं मिलती, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है और उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए उनके अनुभव जानिए, उनका ख्याल रखिए, उनकी सेवा कीजिए। सच में उन्हें दिल से बहुत अच्छा लगेगा। आज शाम कार्यक्रम से मनोज को आज्ञा दीजिए।

आज शाम अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हैं कशिका और असरार।

0: दिल की खामोश वादियों में कुछ मधुर नगमे बिखर आए हैं।
1: शाम की चादर में कुछ ख्वाब सितारों से उतर आए हैं।
0: दिल की खामोश वादियों में कुछ मधुर नगमे बिखर आए हैं।
1: मैं लेकर आया हूँ शब्दों की खुशबू और सुरों की सौगात।
0: तो आइए साथ मिलकर जीते हैं इस पल को एक खूबसूरत एहसास के साथ। नमस्कार, अदाब, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट कशिका अग्रवाल।
1: और मैं हूं असरार मियां।
0: साथियों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं आज के सवाल के साथ। और हमारा आज का सवाल है, गांधी जी द्वारा किस कानून को काला कानून यानी ब्लैक एक्ट कहा गया था?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। गांधी जी द्वारा किस कानून को काला कानून यानी ब्लैक एक्ट कहा गया था? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज और लिख भेजना है इस सवाल का सही जवाब आज के एडिटेड पोस्ट में। सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम लिए जाएंगे प्रोग्राम के एंड में।
0: पता है असरार, आज स्टूडियो आते वक्त मैंने आसमान में पक्षियों का एक बड़ा सा झुंड देखा। सब एक लाइन में आराम से उड़ रहे थे। उन्हें देखकर मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर जाते कहाँ हैं।
1: हाँ कृषिका, और इससे मज़ेदार बात यह है कि ये ऐसे ही कहीं नहीं उड़ते। इनमें से कई पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ मौसम और खाने की तलाश में आते हैं।
0: सच में सोचने की बात यह है कि ना इनके पास कोई मोबाइल है ना गूगल मैप, फिर भी ये बिना रास्ता भूले अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल कशिका, और इसी कमाल की यात्रा के बारे में लोगों को बताने और जागरूक करने के लिए आज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
0: इसका मतलब आज का दिन उन खास मेहमानों के नाम है जो हर साल मौसम के साथ अपना ठिकाना बदलते हैं। मतलब जब किसी जगह बहुत ठंड हो जाती है या फिर खाने की कमी हो जाती है, तो ये पक्षी बेहतर मौसम, भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं।
1: और कशिका, क्या तुम्हें पता है कि भारत की हर साल ऐसे लाखों मेहमान पक्षियों का स्वागत करता है? साइबेरिया और यूरोप से आने वाले पक्षी हमारी झीलों और नेचर पार्क में कुछ महीनों तक ठहरते हैं।
0: अच्छा, जैसे बार हेडेड गूस, ग्रेटर फ्लैमिंगो और साइबेरियन क्रेन, ये सब इस यात्रा में माइग्रेट करते हैं ना?
1: हाँ सही कहा, लेकिन आज प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और जलवायु परिवर्तन की वजह से इनकी राहें मुश्किल होती जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति का ध्यान रखें, पेड़ लगाएं और सुरक्षित वातावरण बनाएं।
0: तो असरार, यानी अगली बार जब हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखेंगे तो बस एक पल रुककर उनकी मेहनत और अद्भुत यात्रा के बारे में ज़रूर सोचेंगे।
1: बिल्कुल, प्रकृति से प्यार करना चाहिए, पक्षियों की रक्षा करना चाहिए और इस खूबसूरत धरती को सबके लिए सुरक्षित बनाना चाहिए।
0: साथियों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है खास।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम युववाणी में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास आज को शुरू करते हैं। कुछ खास आज से पहले हम जानते हैं आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट। आपको बता दें कि आज का दिन शनिवार और आज के दिन हम आपके लाते हैं सेगमेंट हेलो फ्रेंड, जिसमें आप हमें हमारे नंबर 0595-2324-326 पर कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है छोटी बचत लंबी राहत, जिसके ज़रिए आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: साथियों, शुरू करते हैं हमारा दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज। और आज ही के दिन यानी 9 मई को 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म रत्नागिरी के कोटलुक गांव में हुआ था।
4: गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान नेताओं में से थे जिन्होंने कलम, विचार और तर्क के माध्यम से देश की चेतना को जगाया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में गिने जाते हैं।
3: सन 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था ऐसे युवाओं को तैयार करना जो निस्वार्थ भाव से देश सेवा करें। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी ने कहा था, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं।
4: उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक न्याय और स्वशासन की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागरूक नागरिक होते हैं। गोखले जी ने जीवन भर शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण के लिए कार्य किया।
3: मात्र 48 वर्ष की आयु में 19 फरवरी 1915 को उनका निधन हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा,
4: लेकिन उनके विचार आज भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बने हुए हैं।
3: गोखले जी ने हमें नीति, सेवा और राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाया।
4: तो दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और अब बात उस अमर योद्धा की जिनका नाम लेते ही साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप जी के बारे में।
3: महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वह उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे।
4: उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया, मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा। सन 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी यानी हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना का डटकर सामना किया। संसाधन सीमित थे,
3: लेकिन साहस असीम था। और इस युद्ध में उनके साथ था उनका प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि प्रताप का सच्चा साथी था।
4: घायल होने के बावजूद उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर कठिन जीवन बिताया, लेकिन कभी अपनी स्वतंत्रता का सौदा नहीं किया।
3: महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि आत्मसम्मान और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती।
4: मिट्टी का कण कण गाता है,
3: प्रताप अमर हो जाता है,
4: साहस, त्याग और स्वाभिमान
3: हर दिल में दीप जलाता है। आज महाराणा प्रताप जयंती पर आइए हम एक प्रण लें कि सत्य, साहस और स्वाभिमान के मार्ग पर चलेंगे।
4: शौर्य की गाथाएं कभी पुरानी नहीं होती, वे हर पीढ़ी के रक्त में साहस और स्वाभिमान की अग्नि जगाती रहती हैं। महाराणा प्रताप जैसे अमर योद्धा को नमन करते हुए आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसकी हर पंक्ति वीरता की हुंकार बनकर गूंजती है।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज, कुछ खास है।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज। अब शुरू करते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसे जुड़ने के लिए आप हमें हमारे नंबर 0595-232-4326 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं हमारे पहले श्रोता साथी को।
3: हेलो, नमस्कार सर।
4: नमस्कार
3: जी। सर कैसे हैं सर आप?
4: जी बहुत बढ़िया हैं, आप?
3: सर मैं भी ठीक हूँ सर। आपका नाम?
4: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
3: ओके सर, सर आपकी फरमाइश क्या थी सर?
4: आज तो मेरी फरमाइश ये दिल मूवी से ओ प्रिया प्रिया।
3: ओके सर, तो सुनते हैं सर आपका प्यारा सा गीत।
4: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मैम।
0: जी। नमस्कार सर, हमारे साथ कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं?
1: मैं मैडम सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश कानपुर के पास में फरुखाबाद पड़ता है, वहीं से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: जी सर, जैसे आज का हमारा विषय है छोटी बचत और लंबी राहत, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: छोटी बचत और लंबी राहत।
0: जी
1: अच्छा, तो मैम जैसे छोटी बचत में जैसे जैसे कोई सौदा वौदा खरीदने लाएं तो कम रेट में लाएं और बचत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कई दुकान पे जाते हैं तो मोल भाव करते नहीं हैं, तो उतने रुपए में सौदा लेके आते हैं और वो आ रही है 5 रुपए में है और दे रहे 10 रुपए में, तो उनकी मोल भाव करना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज जी का नाम सुना दीजिए मैडम जी। मूवी का नाम है राधा का संगम, दो बोल करके हैं तुम्हारे हैं, इसकी गर्मी के मौसम में इसके टिप्स बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में।
0: जी सर,
1: जैसे अभी तो गर्मी चल रही है तो पानी से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अभी तो मौसमी फल चल रहे हैं तो करेले, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी ये चल रहे हैं, तो
0: जी
1: इनका
0: बिल्कुल
1: सेवन
0: सर।
1: करना चाहिए क्योंकि पानी शरीर में पानी पूर्ति देता है इस मौसम में।
0: जी जी चलिए सर, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: और जितने तमाम सुनने वाले सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम जी।
0: जी जी धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो, नमस्कार सर।
1: हेलो फ्रेंड,
0: हेलो फ्रेंड जी। सर आपका नाम?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर के अजय गफ्फार साहब से बात कर रहा हूँ।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा। सर, आज का हमारा जैसे कि विषय है छोटी बजट लंबी राहत, तो आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे इस पर?
1: जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज हमारी छोटी सी बचत कल हमारे बड़े काम आएगी।
0: जी बिल्कुल सर।
1: अगर हम 200 रुपए कमाते हैं उसमें 150 खर्च करें, 50 बचा कर रखें
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: बेहतर रहेगा।
0: सही कहा आपने सर। सर आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं राम सिंह का गाना सुनना चाहूंगा। गाने के बोल हैं मुझे तुमसे हैं कितने किले, कुछ सुनने वालों के नाम हैं
0: जी सर बिल्कुल।
1: राबिया खान है, सिमरन खान, इरफान खान, साहिदा बंदी, परवीन, शाहनूर अंसारी, शबनम अब्बासी, मकसूद हुसैन, रीना तमान, गुलक्षा, आकाश रस्तोगी, पम्मी पट के बाद से ये सब सुनना चाहेंगे।
0: अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर सबको जानने के। तो सर पेश है आपका
1: बहुत बहुत
0: सॉन्ग।
1: शुक्रिया।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे हैं हमारा सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। चलिए जोड़ते हैं हमारे अगले श्रोता साथी से। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड मैम, गुड इवनिंग।
0: जी गुड इवनिंग, हमारे साथ कौन सी श्रोता साथी जुड़ी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आकाशवाणी रामपुर में सभी बहुत अच्छे हैं। तो मैम, जैसा हम जानते हैं कि आज का हमारा विषय है छोटी बचत और लंबी राहत, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैम छोटी बचत लंबी राहत, जैसे कि हम दुकान में सामान लेने जाते हैं ना,
0: जी
1: तो काफी सामान ज्यादा ले लेते हैं, हमें जरूरत नहीं होती है, और फिर भी जरूरत सामान ज्यादा आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ज्यादा सामान ना खरीद के हमें थोड़ा सा
0: अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए,
1: तो वो हम पैसे भी बचा सकते हैं और आगे से बड़ी पैसे कमा सकते हैं और काफी बड़ी राहत पैसों से हम।
0: जी बहुत खूब कहा आपने। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैम गीत सुना दीजिएगा, और गीत से बोल दिल लगाने की सजा तो न दोगे मैम। ये कार्यक्रम में मैं पहली बार जुड़ रही हूँ आज,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मौका मिला है आज के कार्यक्रम में जुड़ने का, तो ये गीत मैं सुनाना चाह रही हूँ। मैं आपको
0: जी
1: और तमाम सुनने वालों को, सभी को मैं सुनाना चाह रही
0: हूँ। जी बहुत धन्यवाद मैम आकाशवाणी रामपुर से जुड़ने के लिए। चलिए सुनते हैं आपका ये गीत।

0: हेलो नमस्कार सर
1: जी नमस्ते। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर बताइए सर, आज का सर जैसे हमारा विषय है छोटी बचत और लंबी राह, तो आपके क्या विचार हैं इस पर?
1: जी बिल्कुल, हम अगर छोटी बचत करेंगे तो हमें आगे जाके अच्छा रहेगा। जैसे घर के भी बचत करते हैं, जैसे किराना का सामान लाते हैं उसमें बचत कर सकते हैं, अगर कहीं आना जाना होता है तो उसमें बचत कर सकते हैं।
0: जी
1: जैसे जब
0: बिल्कुल
1: पॉकेट मनी बचाते रहेंगे ना, तो एक दिन हमारी बड़ी सैलरी बन
0: जी
1: जाएगी।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपके विचार जानकर। तो सर आप कौन सा
1: जी
0: गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम है सिंगिंग किंग और गाने के बोले तेरी ओर।
0: ठीक है सर, तो आप सुनिए अपना गीत।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा
0: थैंक यू सो
1: लगा।
0: मच सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर।
1: जी।

0: काला कानून यानी कि ब्लैक एक्ट कहा गया था, और इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत में बढ़ती राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ये कानून लागू किया था। इस एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी और लंबे समय तक जेल में रख सकती थी। यानी ना कोई सुनवाई, ना कोई अपील और ना ही कोई न्याय। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। चलिए अब जानते हैं इस सवाल के सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम।
1: लालगिरी गोस्वामी, खिलेश फुलमाली, हल्के जयपाल, दुर्गाराम साहू, पुंजाजी नावकर, नानक खन्ना, सुदर्शन शाह, धर्मेंद्र छिपा, जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद रफीक पंवार, दिलीप भाबर, भाई रफत साहब, दिनेश वर्मा, दीदर्शन गोण, नंद कुमार ठाकुर, ताज अंसारी, अल्ताफ हुजरे, राम कुमार रेवर, मसरूर हसन, राजू मिगलानी, राधेश्याम पांडे, शाहजी भोटके, रामशरण रामशरण, विनोद मुनत, अनिल बी गोटके, महाराज कीर्तन, देवशंकर तमूरिया, सुरेश जायसवाल, अजीत भावसार, गंगा सिंह रावत, विट्ठल सुरेशे, इरशाद अहमद, सतेज चंचोलिया पंजोलिया, नाना लामसे, उत्तम सिंह, अभिजीत गांवकर, मोहम्मद जाहिद अली, हीरामणि वर्मा, नवी हसन अब्बासी, एमडी यासीन अनजान, तुलसी मस्कीन, सुनील पाठक, मोहम्मद सैयद अब्बासी, रवि कुमार राहुल, विजय सुरालकर, मुकेश कश्यप, गजानन येले, रवि रस्तोगी, बी एल धाकड़, हाजी गफ्फार खान, धीरज भाई राबड़ी, अजीत कसाना, मुजफ्फर अली खान, इमरान शेख, शाहरून नूर अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, राजकुमार दूदी, प्रवीण चौहान, मोहम्मद अफीज़, नितेश कुमार दामगन, लाडला जी, भाई रफत साहब, चौधरी राजवीर सिंह, मिसबा शमसी, शाहजी भोटके, दुर्गाराम साहू, शामसुल कमर, मोहम्मद अफजल ताज, फागुराम यादव, आकाश रस्तोगी। तो ये थे हमारे सभी श्रोता साथी जिन लोगों ने आज के सवाल का सही जवाब दिया है।
0: तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम बताना ना भूले हमारे इस पते पर। और हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड संख्या 244901। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने पत्र भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है पत्र मिला airrampur@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: व्हाट्सएप नंबर दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, हमारा नंबर है 9410087876। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब बहुत गर्मी चल रही है, और जैसे कि आप जानते हैं आज एक वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी था, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर रोज़ शाम में अपनी छत पर एक कटोरा पानी रख दें ताकि जो भी बर्ड्स आएँ वो पानी पी सकें, उनकी प्यास बुझ सके। क्योंकि ये करने से कम अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए, तो हम कुछ पानी पिला दें जिससे माइग्रेटरी बर्ड्स जो इतनी दूर से सफ़र करके हमारे देश में आए हैं तो उनको पानी मिल सके। और पता है कि गर्मी कितनी बढ़ लगी है कि जब इंसान ही उसमें सर्वाइव करने बहुत मुश्किल हो रही है, तो बर्ड्स के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा ये सब।
0: साथियों, अब समय है आपसे विदा लेने का, हमें दीजिए अनुमति। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट कशिका अग्रवाल,
1: और मैं हूँ असरार मियां।
0: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थीं कशिका अग्रवाल और असरार मियां। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास

0: मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।

ये सूचना हमें मिली है। सूचना देने वाले हैं नसरुद्दीन पुत्र भूरे शाह, निवासी मोहल्ला यादवान, बवराला, जनपद संभल। ये सूचना देते हैं कि गुलबहार पत्नी नसरुद्दीन शाह, ये 24 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। कद 5 फीट, रंग गोरा, शरीर की बनावट इकहरा, चेहरा पतला, आँखें गोल हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। नसरुद्दीन पुत्र भूरे शाह, मोहल्ला यादवान, थाना बबराला, जनपद संभल। इनके बारे में इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है 9084405168।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स के साथ साथ श्रोताओं आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। संध्या के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं कभी हाँ कभी ना फिल्म से। इस गीत में स्वर है कुमार सानू का और संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने। गीत को लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कभी हाँ कभी ना से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक के स्वर में। इस गीत में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है सूर्या।

फिल्म सूर्या के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं अब्दुल हफीज और पंकज सक्सेना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रांत चौधरी।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी भैया बहनों को आपके भैया पंकज
1: और अब्दुल हफीज भैया की
0: राम राम। और अब्दुल हफीज भैया कैसे हो?
1: हाँ पंकज भैया ठीक हैं, और आप सुनाओ।
0: बस भैया बढ़िया हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान साथी हैं वे बढ़िया होंगे और अपने जो खेती बाड़ी को जो काम होगा ना उनको बाको समय रहते वे पूरे कर रहे होंगे।
1: हाँ पंकज भैया, कुछ हमारे जो कृषि जगत के कार्यक्रम हैं
0: जी भैया,
1: उसमें बदलाव किया गया है।
0: हाँ
1: एक मई से
0: जी भैया।
1: तो क्या क्या बदलाव किया गया है?
0: हाँ भैया,
1: हमारे किसान भाइयों को बता दें।
0: जी भैया, भैया जो पहले बुधवार पड़ा है ना वहाँ में सफल कृषक से बातचीत सुनाई जाएगी।
1: हाँ भैया, जो दूसरा बुधवार पड़ेगा उसमें महिला कृषक से बातचीत की जाएगी।
0: इसी प्रकार जो तीसरा बुधवार होगा उसमें मासिक कृषि गोष्ठी करी जाएगी।
1: हाँ भैया, और जो चौथा बुधवार होगा उसमें सफल कृषक स्टार्टअप सुनाया जाएगा।
0: जी भैया, और यदि पांचवा बुधवार पड़ता ना भैया तो सफल कृषक से बातचीत करी जाएगी।
1: अगर गुरुवार की बात की जाए तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलित विशेष एक वार्ता सुनाई जाएगी।
0: जी भैया, और दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका जो खेत खलिहान से संबंधित होगी।
1: हाँ भैया, अगर गुरुवार तीसरा पड़ा तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
0: जी भैया, चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका जो फिर खेत खलिहान से संबंधित है।
1: अगर भैया पांचवा गुरुवार हुआ तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष ये सुनवाया जाएगा।
0: जी भैया, और शुक्रवार की बात करें तो पहले शुक्रवार को लोक मंजरी जो हमारे किसान साथियों के फरमासी लोकगीत पर आधारित होगा, इसमें हमारे जो किसान साथी हैं वे अपने पसंद को लोकगीत आला आदि सुन सकते हैं भैया।
1: हाँ भैया, अगर दूसरा शुक्रवार की बात की जाए तो कृषि शंका समाधान, समस्या और उससे जुड़े समाधान।
0: जी भैया, और तीसरे गुरुवार को लोक मंजरी फिर फार्मेसी लोकगीत पर आधारित होगा।
1: भैया, अगर चौथे गुरुवार की बात की जाए, शुक्रवार की बात की जाए तो कृषि शंका समाधान, समस्या और उससे जुड़े समाधान।
0: जी भैया, और पांचवा जो अगर शुक्रवार पड़ता है तो फिर उसमें लोक मंजरी। तो ये तो हमारे जो कार्यक्रम एक मई से जो बदलाव हुए हैं वे हमारे साथियों को सुनवाए जाएंगे।
1: हाँ पंकज भैया, अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें तो इस पते पर, इस नंबर पर जो है फ़ोन करें 0595-23-24-326।
0: और भैया अगर हमारे किसान साथी व्हाट्सएप और SMS के द्वारा हम भेजना चाहते हैं तो हमारा दूसरा नंबर है 9410087876।
1: अगर भैया ईमेल की बात करें तो पत्र मिला aiarrampur@gmail.com।
0: जी भैया, और भैया सोशल मीडिया पर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इसको आप लाइक कर सकते हैं। और पत्रचार भेजने के लिए आपको पतो ही है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। तो ये तो हमारे जो प्रोग्राम एक मई से जो चेंज हैं बाको आपने बताओ हमने आपको। और अब्दुल भैया देखो, हम सब लोग खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं लेकिन अब्दुल भैया इस समय ना हमारे आजकल खेती में लागत लगातार बढ़ रही भैया, है ना भैया? और बासे जो हमारी ज़मीन है वहाँ की जो उर्वरता शक्ति है वह पहले जैसी ना है। ऐसे में हम सब लोग ऐसे कौन सा तरीका अपनावें जिससे हमारी मिट्टी भी सुधरे और हमारा बासे खर्चा भी कम आवे।
1: हाँ पंकज भैया, आपने सही बात बताई। अगर बात करें फसल चक्र की तो फसल चक्र हमारे किसान भाई नहीं अपना रहे हैं। गेहूं धान या मक्का गन्ना, ये ऐसी फसलें हैं जो लगातार करते चले आ रहे हैं
0: जी।
1: फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर फसल चक्र हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो उससे ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है
0: जी।

0: तो अगर हम बात करें फसल चक्र में जो हरी खादें होती हैं पंकज भैया,
1: जी भैया
0: अगर हरी खाद का इस्तेमाल हमारे किसान भाई करते हैं तो
1: जी
0: खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, और दूसरा जो पैसे की बचत है वो होती है।
1: जी
0: कैसे होती है बचत? जैसे अगर हमारे किसान भाई दलहनी फसलें बोते हैं, दलहनी में जैसे ढैंचा है
1: जी
0: या जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें जो जड़ें होती हैं उसके अंदर नाइट्रो बैक्टीरिया पाए जाते हैं और
1: जी
0: वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं।
1: जी
0: अगर बात करें पीएसवी कल्चर की, तो पीएसवी से फास्फेटिक बैक्टीरिया को इकट्ठा करते हैं और फास्फेरस को देते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई ये हरी खाद अपने का जो अपनाते हैं तो
1: जी
0: इससे लाभ होता है।
1: और भैया देखो, बिल्कुल सही बात बताई आपने। हरी खाद जो होती है ना, वो मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, और उसकी जब मिट्टी भुरभुरी बनती है तो जल धारण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। इससे मिट्टी में हवा पानी को संतुलन बनो रहता है।
0: हाँ भैया, अगर जैसे ढैंचा है, सनई है, मूंग है, ये दलहनी फसलें जो फूल से पहले खेत में लौट दी जाती हैं,
1: जी
0: ये हरी खाद कहलाती है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति, कार्बनिक पदार्थ 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी होती है। इससे यूरिया की बचत होती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी की जो भौतिक जैविक दशा में सुधार होता है।
1: जी और मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ने लगते हैं।
0: हाँ भैया, और मिट्टी की गुणवत्ता जो होती है पंकज भैया वो
1: जी
0: बढ़ती है,
1: जी
0: और जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ती है, और सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता होती है वो
1: जी
0: बढ़ जाती है।
1: अच्छा, और रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया हम डालते हैं ना लगातार, तो वहाँ पर निर्भरता कम हो जाती है, और जब उस पर निर्भरता कम होगी तो स्वाभाविक रूप से भैया खेती में जो खर्चा है वो भी कम आएगा।
0: हाँ भैया, और दूसरा खरपतवार जो नियंत्रण होता है वो
1: जी
0: घनी फसलें होने के कारण खरपतवार जो होते हैं उसमें कम जमते हैं, और जल धारण जो क्षमता होती है उसमें वो भी बढ़ जाती है, उसमें सुधार होता है।
1: जी जी तो अब्दुल भैया, और इसमें आपने बिल्कुल सही बात बताई, हरी खाद से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या तो बढ़ती है जो पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने में मदद करती है। इससे क्या होता है ना, मिट्टी जीवंत तो बनी रहती है और जो फसलें रोगों से भी काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती हैं।
0: हाँ भैया, तो हरी खाद का महत्व हमारे किसान भाई समझें और हरी खाद अपने खेतों में अपनाएं। और पंकज भैया, इस
1: जी
0: समय जो पलेवा हो गया, एक तरह से
1: जी
0: बारिश हुई है, तो
1: जी
0: हमारे किसान भाई अपना खेत जोतें और उसके बाद जो है हरी खाद के रूप में ढैंचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है,
1: जी
0: ये ऐसी फसलें हैं जो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरीके से हरी खाद उगा करके अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएँ।
1: जी और हम सब लोग खेती बाड़ी कर ही रहे हैं अब्दुल भैया, लेकिन हमारे जो किसान साथी हैं वे पशुपालन भी करते हैं,
0: हाँ पंकज
1: क्योंकि
0: भैया,
1: भैया पशुपालन और खेती को बिल्कुल आपस में लगाव है। तो पशुपालन के बिना खेती अधूरी है और खेती के बिना पशुपालन। तो गर्मी का मौसम चल रहा है अब्दुल भैया इस समय, तो हम गर्मी के मौसम में अपने जो हमारे जो दुधारू पशु होते हैं हम उनकी किस प्रकार से देखभाल करें, जिससे कि हमें उनसे जो दूध उत्पादन है या जो और भी उत्पाद हैं वे सही प्रकार से ज़्यादा मिलें। तो इसी से संबंधित हम अपने किसान साथियों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जाको विषय है गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल। जब इस पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मानसी जी, और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे हैं राजेंद्र भट्ट। तो साथियों आपको सुनवाते हैं जा भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है पन्नेगर विश्वविद्यालय की पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी जी। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार
2: मैम। जैसे कि हमारे किसान भाई यहाँ पर दुधारू पशु काफी तादाद में होते हैं, तो अगर इसमें हम बात करते हैं जैसे कि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस मौसम में विशेषकर जो दुधारू पशु है जैसे कि गाय या भैंस है, तो उनकी किस प्रकार से देखभाल करें इसमें हमारे किसान भाई।
3: बिल्कुल, पशुशाला को ठीक प्रकार से हम इस मौसम में साफ कर सकते हैं, और सारी जो कार्यविधि है वो भी हमारी बढ़ जाती है। जितने भी हमारे कार्य हैं पशुओं से रिलेटेड वो हम इस हमारे बढ़ जाते हैं और हम अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। पर इसी मौसम में हम ये भी देखते हैं कि पशुओं में जो अंतःकृमि है इनका प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक जो कृमि बहुत सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं वो अब सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो अंडे लार्वा जो भूमि में छुपे होते हैं वह भी बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो पशुओं को अंतःकृमि की शिकायत इस समय देखने को मिलती है, और ये बहुत जरूरी है कि अंतःकृमि का हम जो है इलाज जरूर करना चाहिए, उसकी कृमिनाशन की दवाई जरूर देनी चाहिए, क्योंकि

और सभी को पता है कि कृमि से जो है पशु की उत्पादकता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही पड़ता है, उत्पादकता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अति उत्तम होगा यदि हम जो है पशुओं को अंतःकृमि नाशन जो है दवाएं हैं वह इस मौसम में दें, तो इससे उत्पादकता भी बनी रहेगी और स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा, यानी हानि भी कम से कम होगी। तो कृमि नाशन दवाएं जो है वह बहुत सारी उपलब्ध हैं। इसमें से जो बहुत आम दवाएं जो पशु पालक भाई भी जानते होंगे, जैसे एल्बेंडाजॉल है या फिनबेंडाजॉल है, तो इनकी गोली 1.5 से 3 ग्राम तक की गोली जो है वो मुख द्वारा या खिलाया या पिलाई भी जा सकती है पशुओं को। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर आप देखें तो एक पिप्रासिन की दवा आती है, वो भी अंतःकृमि नाशक दवा है और वह भी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो पशुपालक भाई जो नवजात बच्चे हैं, 1 माह तक के बच्चे हैं, उनको पिप्रासिन जो है वो 5 मिलीलीटर, 2 माह के बच्चों को 10 और 3 माह के बच्चों को 30 ml तक जो है पिप्रासिन पिलाई जा सकती है। दवाइयों का सेवन यदि पशु चिकित्सक के सामने हो तो यह ज्यादा अच्छा है। एक चीज और देखने को मिलती है, जो गाय ब्याही होती हैं और अधिक दूध देने वाली होती हैं, जिनके बारे में अभी हम आप बात कर रहे थे, तो उन्हें मिल्क फीवर की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें को हम दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, जिसमें जो ब्याह देने के बाद जो गाय होती है वो बैठ जाती है, उठ नहीं पाती है। तो इससे बचाव बहुत जरूरी है और इससे बचाव के लिए हम अगर शुरू से ही आहार का ध्यान रखेंगे जो उसकी गर्भावस्था में, तो वह ये ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, इस समस्या में हम कर क्या सकते हैं? इस समस्या में पशुओं के आहार में यदि हम 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण जो है वह मिलाएं तो उससे बहुत फायदा होता है। जो 8 लीटर तक का दूध दे रही है उसे हम 50 ग्राम दे सकते हैं, और अगर जो बहुत अधिक दे रही है उसका 100 ग्राम भी हम प्रतिदिन खनिज मिश्रण उसके जो है आहार है उसमें मिला सकते हैं। साथ ही एक और चीज, हम कैल्शियम की दवा, क्योंकि बेसिक रीजन जो है मिल्क फीवर का वो कैल्शियम का होता है, तो डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम भी हम 50 ml जो है वह गाभिन गाय है उसको दे सकते हैं। परंतु यह ध्यान भी देना बहुत जरूरी है इसमें कि आखिरी के 2 महीने कैल्शियम ना पिलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर जो है उसके डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। एक और चीज जो हम बात करेंगे अब स्वास्थ्य की, तो उसमें वैक्सीनेशन एक बहुत जरूरी चीज है, और टीकाकरण की, जैसे आप सभी जानते हैं कि खुरपका मुंहपका का टीका साल में 3 बार लगा सकते हैं, पशु पालकों ने नहीं लगवाया है तो वो उसका टीकाकरण अवश्य करा लें, क्योंकि बरसात से पहले अगर हम टीकाकरण कराए रहेंगे तो ये समस्या जो है वह नहीं दिखने को मिलेगी और जो जानवर हैं वह सुरक्षित रहेंगे। जो बछड़े और बछिया ब्याए हुए 2 सप्ताह हो गया है, उनका हम जिसको कहते हैं ना सींग काटना, तो उनको हमको सींग रहित भी अवश्य करा लेना चाहिए, और भैंस के बच्चों में भी यदि वह 15 दिन के हो गए हैं तो उनको भी सींग रहित अवश्य करा लेना चाहिए। इसी महीने में हम एक और समस्या देखने को मिलती है हमें, वह खाज दाद खुजली की समस्या। तो इससे बचने के लिए यदि पशुपालक भाइयों को अपने जानवरों में कहीं भी थोड़ा भी दिखाई देता है या प्रथम लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही इसका इलाज कराना चाहिए। तो इसके इलाज के लिए तो हाइजीन बहुत जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी है, तो उस चीज का ध्यान दें। साथ ही जो लक्षण है उनका ट्रीटमेंट और यानी उपचार जरूर करना चाहिए। कुछ घरेलू भी तरीके हैं और कुछ दवाइयां भी दुकानों में मिलती है, जैसे ट्यूब वगैरह, हिमैक्स की ट्यूब है या ट्रॉपिक्योर है या पेस्टोवेन है या इस तरह से कोई जो दवाइयां हैं वह एक ट्यूब पशुपालक भाई ले ले और वह जो लक्षण है वहां पर उसका उपयोग करें और साफ सफाई का ध्यान रखें तो यह समस्या फैलेगी नहीं। इस समस्या के साथ एक दिक्कत यह है कि अगर बहुत ज्यादा जानवर इकट्ठे हैं तो तेजी से सारे जानवरों में फैलती है और फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो रेगुलर जो अच्छा पशुपालक वही होता है जो नियमित अपने पशुओं को देखे और कहीं भी कुछ भी बदलाव अगर उसके शरीर में हो रहा है या उसके हाव भाव में हो रहा है तो भाई उसका निदान पशु

0: चिकित्सक की सलाह से जरूर करवाएं। साथ ही जो घरेलू उपचार है, कई बार हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो भी जानते हैं कि हल्का फुल्का खाज होने पर हम कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप 10 ग्राम कपूर 30 मिलीलीटर सरसों का तेल में मिलाकर इसको भी अगर हम लगाएंगे उस लक्षण पर तो भी वह लक्षण जो है वह समाप्त हो जाता है। अगर पशुशाला में कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया हो या मुंह से गंदा पानी इकट्ठा है तो उसको जरूर साफ करा दें, क्योंकि इससे जो है पशुओं में दस्त की समस्या हो जाती है और फिर पशुओं को जो है नुकसान होता है और उसका उपचार कराना बहुत जरूरी है। तो इससे बचने के लिए, दस्त आदि से बचने के लिए पशुशाला की सफाई जरूर करवाएं।
1: जी तो मैम, जैसे कि तो बड़े पशुओं की आपने बात कही, तो लेकिन अगर हम जैसे बात करते हैं भेड़ है या बकरी है तो या बच्चियां हैं, तो इनकी किस प्रकार से देखभाल करें इस बदलते मौसम में हमारे पशुपालक भाई?
0: जहां तक भेड़ और बकरियों का सवाल है तो बकरियों को भी इस माह के अंत तक पोंकनी रोग का टीका जो है वह अवश्य लगा देना चाहिए, क्योंकि अप्रैल मई में इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है और ये रोग ऐसा है कि बहुत अधिक मात्रा में पशुओं की हानि होती है। तो इस माह में जो पशुपालक भाई हैं वह पशु चिकित्सक की सलाह से पोंकनी रोग का टीका जरूर अपनी बकरियों को लगा दें। भेड़ों में भी चेचक रोग का टीका भी इसी माह में लगाना चाहिए ताकि इस रोग से भी जो भेड़ है वो बचे रहे। साथ ही टीकाकरण के अलावा भेड़ को इसी माह में उनके ऊन भी उतारने का उपाय करना चाहिए पशुपालक भाइयों को, तथा ऊन उतारने से पहले तथा बाद में टिपिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो है भेड़ जो है वह स्वस्थ रहेगी और ऊन भी। कई बार ऊन उतारने के समय कुछ घाव भी हो जाता है तो वहाँ पर पशुपालक भाई तुरंत ही पिंचर आयोडीन या एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि भेड़ों की जो है त्वचा जो है वह खराब ना हो। इसी माह में जैसा कि बड़े जानवरों में भी हमने देखा और गाय भैंस की बात जब हमने करी थी तो अंतःकृमि के बारे में बात करी थी, और भेड़ बकरियों में भी अंतःकृमि का प्रकोप बहुत होता है और अंतःकृमि नाशक दवाएं जो है इस मौसम में भेड़ बकरियों को भी पशु चिकित्सक की सलाह से पिलानी चाहिए। साथ ही कई बार हमें देखने को मिलती है बरसीम जो है वो फूल रही होती है और बहुत ज्यादा हरा चारा या फूल वाली जो हरे चारे होते हैं उसको खाने से, ज्यादा मात्रा में खाने से पशुओं में अफारा की समस्या होने लगती है, जैसा कि पशुपालक भाई जानते ही हैं अफारा की समस्या। और अफारा की समस्या से बचने के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि आप हरे चारे के साथ सूखा चारा भी अगर मिलाकर दें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। और यदि यह समस्या आ ही गई है तो फिर जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस के बारे में भी मैं बात कर लूंगी इसी बीच में, तो उनको आप घरेलू उसमें 500 जो है मिलीलीटर खाने वाले तेल में 50 ग्राम काला नमक और 30 ग्राम खाने वाला सोडा, 15 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम हींग पिलाई जाए तो उससे आराम मिलता है। और साथ ही अगर मैं भेड़ बकरियों के बारे में बात करूं तो यही मात्रा थोड़ी कम क्वांटिटी में, जैसे कि 100 मिलीलीटर जब तेल लेंगे आप तो 20 ग्राम उसमें काला नमक, 10 ग्राम जो है उसमें खाने वाला सोडा, 5 ग्राम अजवाइन और 2 ग्राम हींग अपने जानवरों को पिलाएं। और यह ध्यान रखें कि इसको पिलाने के बाद जानवर तुरंत बैठे ना, थोड़ा उसको टहले, और यदि आपको लगे कि दोबारा भी दवा देने की जरूरत पड़ रही है तो आधे एक घंटे बाद जो है इसी दवा को रिपीट भी किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर पशुओं को आराम नहीं मिल रहा है तो पशु चिकित्सक खाएं और जो है इसका इलाज करवाएं।
1: जी मैम, एक आपसे हमारा प्रश्न और है कि जो कुक्कुट पालक भाई हैं किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, मुर्गियों में देखिए, अभी मुर्गियों में सबको पता है थोड़े महीनों पहले, 6-7 महीने पहले बर्ड फ्लू की समस्या देखी गई थी और पूरा का पूरा फ्लॉक ही वाइप आउट करना पड़ा था। तो मुर्गियों के साथ ये है कि बहुत मात्रा में इकट्ठे रहती है तो उनके लिए ये योजना है, उनको पालने के लिए बहुत सर्वाधिकम है। यदि किसी को नया फ्लॉक शुरू करना है तो वो इस माह में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है बहुत सर्दी नहीं होती और बहुत गर्मी नहीं होती और चूजों के मरने की दर जो है वह कम हो, तो इस समय में जो है मुर्गियां पाली जा सकती हैं। और इस समय जो मुर्गियां पाली गई हैं वह सितंबर अक्टूबर में अंडे भी देने लगती हैं। तो यह मौसम बहुत उपयुक्त है अगर किसी पशुपालक भाइयों को मुर्गियों का पालना शुरू करना है। साथ ही अगर पहले से भी पाली हैं मुर्गियां, कई पशुपालक भाइयों ने पहले से पाली हैं, तो उनका जो है वो हाइजीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। हाइजीन की रिक्वायरमेंट में क्या है, जो बिछावन है उसको बदलें या पलटें या नया बिछावन लाएं, उसके लिए यह बहुत अच्छा समय है। तथा कई बार मैंने अभी देखा कि एक जगह पशुपालक भाई ने पाली थी मुर्गियां और उसमें बहुत ज्यादा पंख नुचे हुए थे, तो एक समस्या अगर पशुपालक भाइयों के पास मुर्गियां हैं और उनकी चोंच बड़ी हो गई है और दूसरे के पंख नोच रहे हैं, तो इस समय चोंच काटने का भी समय जो है वह उपयुक्त है। तो पशुपालक भाई जो है इस समय चोंच काट सकते हैं और जिससे कि मुर्गियां जो है एक दूसरे को घायल ना कर सकें। साथ ही जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन की समस्या है यानी वातावरण को शुद्ध रखने की समस्या है, अगर है तो उसका निदान जरूर करें, जैसे कि खिड़की दरवाजा जो है उसको साफ सफाई करके उनको खुला रखें। स्पेस की रिक्वायरमेंट देखें, बड़ी मुर्गियों को 2 से 2.5 फुट का स्थान चाहिए होता है, तो अगर ज्यादा है तो उनको दूसरे में शिफ्ट कर दें या कुछ नया बना लें। जो मुर्गियां 6 सप्ताह की हो गई हैं उनका रानीखेत बीमारी से टीकाकरण जरूर करवाएं, और जो 8 सप्ताह की हो गई हैं पहले वाली पाली गई मुर्गियां उनको फाउल पॉक्स का टीकाकरण जरूर करवाएं। और आहार संतुलित दें, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें, स्पेशली जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, और हवा पानी धूप का प्रबंध अनुकूल होना चाहिए मुर्गियों के बाड़े में। अच्छा, एक और चीज, जो ये तो हुई जो बहुत बड़े तादाद में पशुपालक भाई मुर्गी पालन करना चाहते हैं, साथ ही कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो पिछवाड़ा मुर्गी पालन करते हैं, जहाँ 8-10 घर के पिछवाड़े में जहाँ 8-10 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं, तो यह समय में भी बहुत उपयुक्त है उन पशुपालक भाइयों को जो इस राह पर चलना चाह रहे हैं, तो वो 8-10 मुर्गियों से अपने पिछवाड़े मुर्गी पालन का पालन शुरू कर सकते हैं।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को कि इस माह में कौन कौन से पशुपालन संबंधित जो है महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो मैम आपने इतने व्यस्त कम से समय निकाला आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: किसान साथियों, अभी आप भेंट वार्ता सुन रहे थे। साथियों, गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल जानकारी दे रही थी डॉक्टर मानसी। आपसे बातचीत कर जानकारी ले रहे थे राजेंद्र भट्ट, जो कि पंतनगर से प्राप्त थी। साथियों, अब एक लोकगीत सुनवा रहे हैं, बोले हाय किसी पहरे पे। स्वर है रीता शर्मा का, आइए सुनते हैं इससे पहले ये संदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम उम्मीद करते हैं ये लोकगीत आपको ज़रूर पसंद आए होगा। और अब आपको सुनवाते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक से की गई बातचीत। कृषक हैं श्री सुनील कुमार, जो गांव गुंगचियाई पूरनपुर पीलीभीत के रहने वाले हैं। उनसे हमारे अब्दुल भैया जी ने काफी बातचीत करी, हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं।
1: जी, अपना परिचय दीजिए।
2: जी, मेरा नाम सुनील कुमार जी है। मैं ग्राम गुंगचियाई, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत।
1: जी सुनील जी, क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी में क्या क्या चीज लगा रखी है?
2: इस वेरा मेरे पास गन्ना है मुख्य फसल,
1: जी
2: उसके साथ गेहूं, धान।
1: जी जमीन की बात करें तो कितनी जमीन है अपने पास?
2: अपने पास लगभग खुद की जमीन 11 एकड़ है, और बाद में ठेके बटाई पे ले रखी हुई है।
1: जी, मुख्य फसल गन्ना है अपने यहाँ।
2: जी,
1: गन्ना कितना है?
2: हमारे पास लगभग 10 एकड़ गन्ना है। इस लगभग
1: पेड़ी कितनी है? पौधा कितना है?
2: 3 पेड़ी, बहुत कम अक्टूबर का गन्ना बुआई करते हैं ना, सह फसली खेती
1: अच्छा,
2: इसके साथ।
1: ज्यादातर अक्टूबर का करते हैं।
2: हाँ
1: सह फसली में
2: हाँ
1: क्या खेती लगाते हैं?
2: आलू साथ में लगाते हैं, बाद में जैसे लाही है और मसूर है।
1: अच्छा, मटर नहीं
2: नहीं,
1: बोते हैं आपकी तरफ?
2: मटर बहुत कम करते हैं सर इधर।
1: जी, हाँ, तो आलू का गन्ना तो बहुत अच्छा होता है।
2: हाँ जी,
1: प्रजाति की बात करें तो कौन कौन सी प्रजाति गन्ना लगा रखा है आपने?
2: हमने सबसे ज्यादा 18 18
1: अच्छा,
2: 14 201।
1: दोनों की पैदावार है। पहले 0 38 लगाया था आपने?
2: 0 38 लगाया था सर, लेकिन वो उसके बाद वो लाल सन उसमें ज्यादा आना,
1: हाँ,
2: इसी चक्कर में सूख
1: रेड
2: गया।
1: रोड
2: हाँ
1: आने की वजह से वो ज्यादातर, जबकि गन्ना सबसे बेहतर है वो।
2: सर, बहुत कम छोड़ते हैं हम, ज्यादा
1: दोनों के
2: अली।
1: काट लेते हैं।
2: हाँ,
1: कौन सा चीनी मिल एरिया
2: पीलीभीत
1: लगता है आपको?
2: है, एलएच पीलीभीत।
1: पीलीभीत। एलएच प्राइवेट है या
2: हाँ,
1: सरकारी है ये?
2: प्राइवेट है।
1: तो सेंटर लगता है या गेट पे पहुंचाते हैं आप?
2: नहीं, सेंट लगता है हमारे यहाँ पे
1: और गन्ने के साथ
2: भी।
1: क्या क्या फसलें लगा रखी?
2: इस बार हमने तो करीब 2 एकड़ में पालेज लगा रखी है, साथ में इसमें लौकी है और कद्दू है साथ में।
1: गन्ने में है या अलग है?
2: नहीं, वो अलग से है सर।
1: तो पलेज में जैसे खरबूजा है या तरबूज है?
2: नहीं, खरबूज सर पुआ साइड में ज्यादा होता है, लेकिन अपने यहाँ सबसे ज्यादा लौकी और कद्दू कहते हैं वो सर। एक साथ में 2 फसलें हो जाती है। तरबूज में 750।
1: तो ये कहाँ लेके जाते हो? मंडी ले जाते हो?
2: नहीं सर, बहुत से ज्यादा, जैसे जब नहीं आ पाए कोई ठेकेदार वगैरह खरीदने के लिए, तो मंडी पहुंचाना पड़ता है ना, वैसे तो हमारे खेत से
1: हरली
2: उड़ती
1: छूट बोरर है या बोरर है, ये
2: जी
1: बहुत ज्यादा लगे हैं। इसकी क्या रोकथाम करते हैं आप?
2: सर। पहले तो हम तो बहुत सा गन्ना, जैसे हमने ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल रखा है नीचे से। हाँ, घूरे में मिलाकर उसे सड़न पहले बनाया बढ़िया तरीके से, फिर उसमें डाल रखा है सर।
1: जी, तो
2: साथ फिर
1: ये
2: साथ में
1: फंगस के लिए हो गया।
2: हाँ, और जैसे हमने एम्पलीगो वगैरह,
1: जी
2: हाँ उसके लिए वो करते हैं, और एमिस्टा टब।
1: जी अच्छा, बेवेरिया वेसियाना आता है, ये लगाते हैं आप?
2: जी, लगाते हैं।
1: तो जैसे सुडोमोनास है, बेवेरिया वेसियाना, जैसे आप ट्राइकोडर्मा डालते हो, इसी तरीके का
2: हाँ
1: प्रोसेस है उसमें भी?
2: वो भी सर हम ब्लॉक से ले लेते हैं जी सर।
1: हाँ, ब्लॉक कितनी दूर
2: हाँ,
1: पड़ता है आपका?
2: ब्लॉक सर लोग 10 किलोमीटर है सर।
1: क्या क्या सुविधाएं हैं इस समय?
2: सर हमारे यहाँ ब्लॉक में हर सुविधाएं हैं सर, हर चीज मिल जाती है सर।
1: तो इसमें
2: जी
1: फार्म
2: जी
1: रजिस्ट्री पर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो क्या फार्म रजिस्ट्री बना रखी है आपने?
2: नहीं सर, हमारे पिताजी की सर सब बनी हुई है फार्म रजिस्ट्री।
1: हाँ, फार्म रजिस्ट्री है, फैमिली आईडी है, ये होंगी तभी यूरिया या डीएपी मिलेगा। तो जैसे आपने गन्ना अभी

0: बताया कि 10 एकड़ गन्ना है, तो कौन सी विधि से गन्ना बोते हैं आप?
1: हम लगभग आठ में बुआई करते हैं, वो ट्रेंच विधि से करते हैं।
0: जी
1: हाँ, जो बाद में करते हैं सर लेट, वो उसमें शादी में लगभग 2 फीट रखते हैं सर,
0: अच्छा। और अगर हम ट्रेंच की बात करें, ट्रेंच में कितनी दूरी रखते हैं आप?
1: करीब
0: हाँ,
1: साढ़े तीन
0: उसमें सह
1: फीट
0: फसली खेती भी लेनी होती है, तो बीज कितना पड़ता है अपने यहाँ?
1: बीज बोई हम सर ऐसे जैसे सिंगल बोर्ड बट से बोते हैं तो कम पड़ता है
0: काय के
1: सर।
0: गन्ना बोएंगे या दो दो आंख का टुकड़ा
1: हाँ, लगभग
0: बोएंगे तो
1: तीस
0: बीज
1: कुंटल
0: ज्यादा
1: बस
0: लगेगा।
1: चढ़ाकर बोएंगे सर, 30 कुंटल आ जाता है लगभग।
0: जी, अच्छा, वटचिप आपने यहाँ लगा रखा है अपने यहाँ, होता है वटचिप का?
1: हाँ, लगभग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा लगाया था सर, अबकी बार था सर, पहली बार बोया है उसके लिए यहाँ पर,
0: जी,
1: तो
0: वैसे
1: एक
0: डेढ़
1: फीट
0: से दो
1: रखा
0: फीट
1: था
0: अगर
1: पर।
0: रखेंगे
1: हाँ
0: तो जो उसकी क्लम्प्स की संख्या यानी गन्नों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें, तो
1: जी,
0: दूरी जितनी ज्यादा होगी इतना बेनिफिट है उसमें।
1: हाँ
0: अच्छा, गन्ने में अब इस समय खरपतवार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस समय खरपतवार नाशी दवाई भी लोग लगा रहे हैं, गुड़ाई उड़ाई भी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसके?
1: नहीं, अभी तो हमारी सर गुड़ाई चल रही है, लास्ट में देखेंगे, अगर कुछ अगर मोथा वगैरह आता है तो उसमें उसके लिए तो मान लो है ही वो सर,
0: अच्छा,
1: छिपरा वगैरह है।
0: गन्ना उन्ना गिरने का डर तो नहीं रहता? अच्छा, पशुपालन करते हैं जी?
1: पशुपालन करते हैं लेकिन कम करते हैं,
0: अब इस समय
1: भैंस हैं दो और एक
0: तो
1: गाय है।
0: दूध क्या करते
1: दूध सर अपना ही मान लो बड़ा परिवार है सर, उसके लिए यूज हो
0: हैं?
1: जाता
0: जी,
1: है सर।
0: और गोबर का
1: बाकी
0: क्या
1: लोगों ने
0: करते हो?
1: डेयरी वगैरह,
0: गोबर का क्या करते हो?
1: गोबर सर खेत में ले जाते हैं अपना।
0: हाँ सही है, अब धीरे धीरे उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, तो
1: हाँ,
0: गोबर का तो
1: पांच
0: होना
1: सर
0: बहुत जरूरी है।
1: हम मोल लेके डालना पड़ता है सर, मान लो जहाँ अपना अपना यूज कर लेते बाद में मोल लेके डालते हैं
0: जी,
1: सर।
0: गन्ने की पैदावार कितना निकल आती है आपके?
1: हमारी सर 500 प्लस चली जाती है सर एकड़ का।
0: ठीक ठाक है गन्ने का तो आपका, तो पेड़ी क्यों नहीं रखते? पेड़ी में तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, उसमें खर्चे कम आते हैं।
1: खर्चा तो सर कम आता है, लेकिन अक्टूबर ऐसा है ना सर, अब पिताजी जो कहते हैं वही उसी हिसाब से
0: जी
1: चलना
0: जी
1: पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: वो कहते हैं
0: बिल्कुल,
1: पेड़ी बहुत ज्यादा मान लो इतना नहीं है, अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे 10 एकड़ है तो 4 एकड़ तो पेड़ी रखना ही पड़ता है लगातार,
0: जी, वो
1: क्यों उसका
0: पर्ची
1: वैसी
0: पर,
1: कोट
0: जी, वैसी
1: पर।
0: कोटे में पर्ची का होना बहुत जरूरी है।
1: हाँ,
0: और आप क्या करते हैं सुनील जी वैसे खेती के साथ साथ? और
1: वैसे हम ग्राम प्रधान है सर यहाँ
0: अच्छा,
1: अपने
0: ग्राम
1: यहाँ
0: प्रधान है, बहुत बढ़िया। प्रधान
1: जी
0: जी, तो ये बताइए आप गांव में क्या सुविधा कर रखी है आपने इस समय?
1: सर, हमारे यहाँ हर वैसे तो हर सुविधा है सर।
0: जी
1: हाँ,
0: हाँ, साफ सफाई की थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक रहे बस, और
1: बस हमारा गांव सर एक तो मेन अपना NH 730 से लगा हुआ है। हाँ,
0: जी
1: मॉडर्न गांव है सर,
0: जी
1: करीब करीब 11,000 आबादी है सर,
0: जी जी
1: सब VIP एकदम फर्स्ट क्लास रोड पर सर
0: जी
1: बना रखे हैं सब हमने।
0: पानी की क्या
1: लाइब्रेरी,
0: सुविधा है?
1: पानी सर, पानी टंकी लगी लगी हुई है लगातार सब,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: चालू नहीं हो पाई अभी। हमारे यहाँ वाटर लेवल बढ़िया है सर।
0: जी हाँ, साफ सफाई तो
1: हाँ
0: आपके यहाँ ठीक ठाक है,
1: हाँ
0: इसमें
1: डिस्ट्रिक्ट
0: कोई
1: पीलीभीत में
0: दिक्कत
1: जो
0: नहीं
1: हमारा क्षेत्र पड़ रहा है सर, उसमें लगभग 10-11 फीट गड्ढा खोदो पानी निकल आता है सर। हाँ, तराई क्षेत्र बोला
0: है।
1: जाता
0: हाँ,
1: है।
0: तराई का
1: वैसे तो
0: क्षेत्र है।
1: मान
0: जी
1: लो हम वैसे तो हमारे यहाँ लोग सबसे ज्यादा सर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर धान गेहूं करते हैं सर,
0: जी
1: लेकिन हम जो है हम गन्ने मान लो हमारा जो मील का जो पेमेंट है बहुत अच्छा है, इसी चक्कर में गन्ना ज्यादा करते हैं
0: हाँ,
1: सर
0: तो गन्ने की अच्छी पैदावार है, ठीक ठाक है, गन्ने
1: अपनी
0: का
1: जमीन के
0: पेमेंट
1: हिसाब
0: अच्छा हो
1: से।
0: जाता
1: हाँ
0: है। जी, ऐसे फसली खेती में आप ले ही रहे हैं। और फसलों में क्या क्या करते हैं वैसे,
1: सर,
0: जैसे ये
1: हम
0: फलेज हो गई आप?
1: बस सर और हम ज्यादा उस पे वो नहीं करते हैं, जो अपना जो मुख्य खेती है वो ही करते हैं सर। नई फसल अभी मान लो जो चीज हमने सोची नहीं, इसकी बार सोच रहे हैं कि अक्टूबर में आपके करीब 2 एकड़ चना लगाने का सोच रहे थे लेकिन नहीं लगा पाया, लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे लगाएंगे
0: हाँ,
1: सर
0: शुरुआत करें चने का।
1: जी।
0: अच्छा, आपका तो एरिया बहुत अच्छा है चने के मतलब,
1: जी,
0: और
1: हाँ
0: सफसली में गन्ने के साथ तो चना बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कीट है, नाशक दवाइयां हैं, वो समय से लगाओ। और उगटा आता है उसमें, तो ऐसी ऐसी प्रजातियां लो जिसमें जो उगटा आता है वो उगटा रहित हो, उसका चने
1: मान लो
0: का
1: चने
0: एरिया
1: में
0: मिल
1: सबसे
0: जाए।
1: ज्यादा
0: हाँ,
1: बीमारी रहती है सर।
0: तो थोड़ा सा उसका कंट्रोल करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैदावार
1: हाँ
0: अच्छा ठीक ठाक मिलेगा। कौन सी फसलें ऐसी करें जिससे हमारे किसान भाइयों की उन्नति हो और पैदावार बढ़े, आमदनी अच्छी हो?
1: सर, मेरा तो मानना चाहिए गन्ने के साथ सहफसली खेती करें तो उससे डबल हमारा फायदा होता है सर।
0: जी हाँ, एक फसल अगर थोड़ा बहुत कम निकलती है तो दूसरी फसल
1: हाँ, तो
0: उसकी
1: दूसरी
0: पूर्ति
1: हमें
0: कर
1: एवरेज
0: देती है।
1: पूरा देके जाती है सर।
0: जी, तो गेहूं लगाते
1: हाँ गेहूं सर, हाँ गेहूं जो जमीन सर अपनी जमीन है उसमें हम
0: जी?
1: गन्ना करते हैं, और बाकी हम जो ठेके पे डालते हैं सर उसमें सब गेहूं धान करते हैं।
0: जी,
1: हाँ,
0: धान में कौन सी प्रजाति आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं इस समय?
1: नहीं, PR 13 और एक PR 126।
0: अच्छा, तो मोटा धान में लगाते हैं आप सभी।
1: हाँ
0: नर्सरी किस समय डालेंगे?
1: सर, अब नर्सरी हमारा तैयारी खेती के चल रही है, अगले लगभग 25 तारीख को हो सकता है, 25 तारीख को पिताजी डलवा देंगे।
0: जी, एक DSR पद्धति होती है यानी डायरेक्ट राइस सोइंग, जी ना, ये समय जैसे हमारे यहाँ सीड ड्रिल होती है, इसी तरीके का
1: हाँ,
0: धान
1: सीड
0: भी
1: ड्रिल
0: होती है, तो उस तरीके से आपने लगाया कभी?
1: नहीं अभी तो नहीं लगा पाए, लेकिन लोगों ने सर हमारे यहाँ जो सरदार लोग हैं उन्होंने यूज किया था सर।
0: हाँ, अगर सपोज करो
1: हाँ
0: 30 क्विंटल धान निकल रहा है और उसमें अगर 25 भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वो बराबर ही निकलता है, लेकिन अगर खर्चे की बात करें तो बहुत ज्यादा खर्चे कम हो जाते हैं, जैसे लगाई का खर्च 5-6 हज़ार रुपये एकड़, अगर हम बात करें कदहर की तो कदहर में 5-6 हज़ार रुपये लग जाता है
1: जी
0: एकड़
1: जी
0: में,
1: जी
0: तो डीजल
1: पानी
0: है
1: की,
0: बहुत ज्यादा इस समय महंगा, और डीजल आप देख रहे हैं कि एक एकड़ में एक दिन में पूरा इंजन भर पाता है, तो दिक्कत पड़ती है,
1: जी
0: तो उसमें क्या हल्का पानी की सिंचाई होगी, आपने देखा ही होगा।
1: जी
0: इस तरीके से आप ज्यादा ना करके थोड़ा शुरुआत करें, 4 बीघे या 1 एकड़ लगाएं, तो आगे को जब अच्छा लगेगा तो आप

0: ट्रेन तो वो बढ़िया पैदावार देते हैं,
1: लेकिन हमने देखा पिछली बार अच्छा लगभग औसत आया था उनका, करीब 25 से प्लस चला गया
0: तो बढ़िया है वो। एक तो अगर
1: डायरेक्ट।
0: खर्चे की बात करें तो खर्चा बहुत ज्यादा कम है उसमें। चलिए सुनील जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत की गई बातचीत और जानकारी दे रहे थे श्री सुनील कुमार। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब्दुल भैया, तो आज आप कृषि संकेत कार्यक्रम में हमारे किसान साथियों को क्या जानकारी दे रहे भैया?
3: हाँ पंकज भैया, आज गर्मी में गहरी जुताई से लाभ कैसे होते हैं, इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं।
2: हाँ भैया, बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि भैया ना गर्मी का मौसम तो है ही और हमारे जो ज़्यादातर किसान साथियों के खेत जो हैं वो खाली पड़े हैं, तो ऐसे में अगर हम गहरी जुताई कर लें तो बाकी लाभ कुछ और ही होगा।
3: हाँ पंकज भैया, गर्मियों में विशेषकर अप्रैल से जून के बीच मिट्टी पलटने वाले हल, यानी
2: जी
3: कि जो डीप प्लाव होता है, जो गहरी जुताई करने वाला होता है, उससे अगर हमारे किसान भाई गहरी जुताई करते हैं तो उससे तेज़ धूप और जो गर्म हवाएं हैं
2: जी
3: पंकज भैया,
2: जी
3: उससे जो मिट्टी की क्रिया होती है उसके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है और अगली फसल के लिए वरदान साबित होता है। अगर
2: जी
3: गर्मियों में गहरी जुताई के लाभ की बात अगर हम करें तो
2: जी
3: कीटों और बीमारियों का जो से जो होता है वो खात्मा होता है। जुताई के कारण मिट्टी के जो नीचे छिपे हानिकारक कीट होते हैं, उनके अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, प्यूपा होते हैं, और वो ऊपर आ जाते हैं और तेज़ गर्मी में वो नष्ट हो जाते हैं। इससे जो सफ़ेद लट, जो वाइट ग्रव्स होता है, बहुत मोटा
2: जी
3: कीट होता है जो गन्ने
2: जी
3: में भी लगता है,
2: जी लगता
3: मूंगफली
2: है।
3: में
2: हाँ
3: लगता है,
2: जी
3: वैसे तो मूंगफली का कीट कहलाता है, तो उसका जो कटवा है, इल्ली है और लाल भ्रंग, ये इन सब भी समस्याओं से और इन कीटों से छुटकारा मिलता
2: जी
3: है।
2: और भैया ना, जो गहरी जुताई से क्या होता है, जो खरपतवार की जड़ होती हैं वे ऊपर आ जाती हैं और जो हमारे जब धूप पड़ती है तो वे सूखकर खत्म हो जाती हैं, जिससे कि जो हम अगली फसल बोलते हैं तो वहाँ में खरपतवार की जो लगन की आशंका होती है वो बहुत कम होती है।
3: हाँ पंकज भैया, अगर मिट्टी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि की बात करें तो गहरी जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे इसमें हवा का संचार बेहतर होता है और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो नीचे तक पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं को मारती हैं।
2: जी और मिट्टी के नीचे की सख्त परत होती है ना, जैसे हार्ड पैन कहते हैं, वो टूट जाती है, जिससे अगली जो फसल की जड़ें अधिक गहराई तक पहुंच जाती हैं और मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है।
3: हाँ भैया, और मिट्टी ढीली होने से फसल के जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो सड़ गल कर खाद के रूप में बदल जाते हैं, और जो रासायनिक दवाओं पर उस पर निर्भर होती है वो भी कम होता है, और जब कीट और रोग ये जो है नहीं लगते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होता है।
2: तो भैया, अगर हम खेती में वैज्ञानिक तरीका अपनाएं और समय पर गहरी जुताई करें तो बस मिट्टी की सेहत, फसल की पैदावार और किसानों को आई आय तीनों में सुधार हो सकता है। तो साथियों, ये तो रही हमारी आज कृषि संकेत में गर्मी में गहरी जुताई के क्या लाभ हैं, और हम कल के कार्यक्रम की जानकारी अपने किसान साथियों को दे दें। कल जो चर्चा को विषय आए वो रहा उन्नत बीज और उनकी पहचान जरूरी। भेंटवार्ता में चारे के लिए मक्का, ज्वार, लोबिया की वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करें और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर डी के शुक्ला जी। लोकगीत सुनवा जाए, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी, मौसम की जानकारी दी जाएगी और ये चर्चा जो जानकारी देंगे वो भैया हमारे देंगे प्रवीण भैया और अनिल भैया जी।
3: हाँ पंकज भैया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब चलते चलते कल के मौसम की जानकारी दे दें। अधिकतम जो तापमान रहेगा वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल में आर्द्रता 51% और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब पंकज भैया,
2: जी भैया,
3: समय तो इजाज़त नहीं दे रहा है,
2: जी भैया
3: तो अब चलते चलते अपने किसान भाइयों को
2: कर
3: कर
2: लेते
3: लें
2: हैं राम
3: राम राम।
2: राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे अब्दुल हफीज और पंकज सक्सेना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विक्रांत चौधरी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम छांव बरगद की। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं श्री प्रमोद कुमार से असीम सक्सेना की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। छांव बरकत के वो कार्यक्रम जिसमें अनुभव इकट्ठे किए जाते हैं, जीवन के लिए कुछ रास्ते सरल किए जाते हैं, जो गुजरी है उससे सीखा जाता है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सफलता के साथ व्यतीत की हुई होती है और उसी सफलता के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ वो जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, एक चिकित्सक हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, जीवन के अनुभव आपने संजोए भी हैं, देखे भी हैं और बहुत कुछ हासिल भी किया है। प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि बचपन आपका किस तरह से गुजरा?
1: बचपन का मिला जो मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, मेरी मदर का देहांत हो गया था।
0: अच्छा।
1: उसके बाद पिताजी हमें जो है घर पे छोड़ आए थे, जहाँ हमारा गांव जिला मुजफ्फरनगर, जहाँ हम मूल निवासी हैं, वहाँ पर हमने 2 साल परिवार के साथ में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में पापा के साथ में हम जो है मुरादाबाद आ गए। पापा रेलवे सर्विस में थे
0: जी,
1: तो वहीं पर ही जो है हमारी बाकी हमारी जो पढ़ाई लिखाई और जो है बाकी वक्त हमारा वहीं गुजरा।
0: और फिर परिवार का साथ आपको मिला जी। आज आप जब उन बीते दिनों को याद करते हैं तो वो दिन आपकी यादों में किस तरह से अंकित हैं?
1: असीम जी, सच कहूँ तो वो यादें इतनी मीठी यादें हैं कि जीवन जिंदगी भर वो जो है
0: उन्हीं यादों की दुनिया में आपको लेके जाना।
1: वो वक्त अब वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं बार बार सोचता हूँ कि मेरा बीता हुआ बचपन एक बार मुझे जो है वक्त वापस मिल जाए तो मैं उसी दुनिया में चला जाऊँ।
0: क्या क्या था उस वक्त खास बात जो अब नहीं है?
1: उस वक्त बेफिक्री थी
0: जी,
1: परिवार का साथ था, हर खुशी कभी कुछ कहना नहीं पड़ा, हर खुशी परिवार ने, हमारे पिताजी ने और बाकी जो हमारे परिसर थे सभी ने हमें बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से आज हम जो है एक वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में रामपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: प्रमोद जी, वो दौर जो आपका दौर रहा वो माना जाता है कि इतने मूल्य प्रभावी थे कि संस्कार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था, यहाँ तक कि घर परिवार के लोग ही नहीं, माता पिता ही नहीं, पड़ोसी तक बच्चों को टोक दिया करते थे उनकी गलत आदतों पर, गलत हरकतों पर या शैतानियों पर। तो ऐसी कुछ यादें हैं क्या?
1: मैं आपको एक बड़ी ही मज़ेदार वाक्य सुनाता हूँ। मैं जब जो है मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ मुझे सिगरेट पीने का शौक लग गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारी माता जी ने हमें देख लिया तो हमसे बोली, बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं जी माता जी हम छोड़ देंगे और हमने छोड़ दी फिर।
0: अच्छा, उस समय जो रिश्ते हुआ करते थे माता पिता के बीच, एक मर्यादा होती थी, एक संस्कार होता था, और आज का दौर भी आप देख रहे हैं किस तरह से बातें होती हैं घरों में, किस तरह से जो प्रभाव पड़ रहा है आधुनिक संस्कृति का हम सबके जीवन पर, वो समाज को एक दूषित वातावरण की तरफ ले जा रहा है। क्या महसूस किया है आपने?
1: असीम जी, सही व्यवस्था जो है समाज की व्यवस्था, उसमें आज के दौर में वो छिन भिन्न हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एकल परिवार, अब परिवार नहीं रहे, परिवार में माँ बाप बेटा बेटी बस यहीं तक परिवार सीमित है, बाकी जो हमारे रिश्ते नाते थे उन्हें हम भूलते चले जा रहे हैं।
0: जब हाँ कुनबा हुआ करता था, सब लोग इकट्ठे रहते थे तो जिम्मेदारियां भी बटी रहती थी और सभी लोग सब पर ध्यान भी देते थे, दुख तकलीफ भी बांटते थे, सुख खुशी में भी सब लोग साथ रहते थे, अच्छा लगता था
1: जी।
0: अब ऐसा मुश्किल है,
1: मुश्किल वास्तव में बहुत मुश्किल है। और जो है अभी कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, करीब हम 20-25% उसे कह सकते हैं कि परिवार में संबंध रिश्ते बने हुए हैं और वो जो है लोग निभा रहे हैं उसको।
0: और उस दौर की कौन सी खास बातें हैं जो आपको याद आती हैं, जिनकी कमी आप इस समय महसूस करते हैं?
1: मैं 2-3 साल गांव में रहा तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश मुझे आज भी बहुत याद आता है।
0: गांव के लोगों में एक धारणा बन गई है कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि में कुछ नहीं रहा, शहरों की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जिंदगी की जो चकाचौंध है वो मिलेगी और जीने की जो सहूलियतें हैं वो मुहैया होंगी।
1: सही मायने में असीम जी अगर देखा जाए तो हम लोग जो है इस समय अंधी दौड़ की तरफ दौड़ रहे हैं, जिसका कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पैसा, सुख सुविधाएं हम ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारे लिए मृग मरीचिका की तरह है।
0: आप स्वयं वरिष्ठ नागरिक हैं, उम्र के इस पड़ाव पर जब हम अपने घर परिवार के बीच रहते हैं तो बुजुर्ग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता, कभी कभी कोई उनके दुख दर्द भी नहीं बांटता, वो अकेले परेशानी सारी झेलते हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ दिल को कितना प्रभावित करती हैं?
1: असीम जी, ऐसी स्थिति दिल को बड़ा उद्वेलित करती है। मेरे पास जो है अक्सर पेशेंट आते हैं, और उसमें से कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि बेटे ने, बहू ने, परि जो है उनके संग इतनी जो है मारपीट करी, चोटें लगी बुरी तरीके से, उनको घायल हो गई, और उसके बाद भी वो जो है वृद्ध शख्स मुझसे आके ये कह रहा, डॉक्टर साहब मैं गिर गया, जबकि मैं मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि इसको जो है इसके संग मारपीट की गई है, क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मेरा काम सिर्फ दवाई देना ही नहीं है, मैं बातों से भी पेशेंट को जो है
0: बिल्कुल
1: अपने ठीक करता हूँ। और पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मेरा व्यवहार उसके साथ ऐसा होता है कि पेशेंट को ये लगे कि डॉक्टर साहब मैं, मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई।
0: बिल्कुल, और उनको इसी बात की ज़रूरत है जो समाज के उपेक्षित हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनके घर परिवार वाले उनका साथ नहीं देते हैं, उनको स्नेह की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको अपनेपन की ज़रूरत है। इस अवस्था में किन किन बातों का ध्यान हमारे वरिष्ठ नागरिकों को रखना चाहिए, एक चिकित्सक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो बताएं।
1: चिकित्सकों में अगर सही मायने में हम आपको बताएं तो सबसे पहले अपना जो है दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए।
0: दिनचर्या के बारे में बताइए डॉक्टर साहब, किस तरह से शुरुआत हो दिन की, किस तरह से पूरे दिन भर गतिविधियां संचालित हो, किस तरह से शाम हो।
1: असीम जी, आप अपने को ये मत सोचिए कि मैं रिटायर हो गया या मैं वृद्ध हो गया। अब मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन मैं भी अपने को अभी यंग महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले अपना आप सुबह को उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, थोड़ा सा योग वगैरह कीजिए, थोड़ी बहुत ईश्वर की जो है प्रार्थना कीजिए, उसके बाद में अपना जो है नाश्ता कीजिए, उसमें जो है उसके बाद थोड़ा सा आप जो है अखबार देखना चाहे अखबार देखिए, कोई प्रोग्राम देखना चाहे प्रोग्राम देखिए। आजकल आकाशवाणी रामपुर से भी जो है सुबह भजनों का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आता है, मैं वो अक्सर देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: गाने सुनिए
1: जी, उसके बाद में जो है आप मैगजीन पढ़ना चाहे मैगजीन देखिए, कोई काम करना चाहे कोई काम कीजिए, उसके बाद आप भोजन कीजिए।
0: किस तरह का भोजन?
1: सात्विक भोजन कीजिए आप। ज़्यादा आप जो है मिर्च मसाला खाएंगे तो इस उम्र में आने के बाद में जो है पेट का डाइजेशन जो होता है वो हल्का कम होने लगता
0: जी,
1: तो मिर्च मसाले आदमी को जो है परेशानी पैदा करेंगे, फिर उसे नई नई बीमारियाँ होंगी। दूसरी बात यह है कि इस उम्र में आने के बाद में जो है आदमी की जो बॉडी की जो कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी थी, वो काफ़ी कम होने लगती हैगी। मसल्स की टोनिसिटी कम होने लगती है
0: जी।
1: शरीर जो है जवाब देने लगता है,
0: शिथिल होने लगता है।
1: उसके लिए आपने को आप जो है चुस्त रखिए, अपने खाने की व्यवस्था देखिए, अपने जो है काम की व्यवस्था देखिए, दूसरे परिवार में आप जो है अपने को एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट से मेरा मतलब ये है

0: कोई काम है परिवार का, बच्चों के साथ मन लगाइए, हंसी
1: आपको क्या
0: खुशी के
1: लगता
0: बाथरूम
1: है, क्योंकि
0: जाइए।
1: आप तो मरीज का मन भी पढ़ते हैं, दिमाग भी पढ़ते हैं, ये खुद को बदल पाना एक बुजुर्ग के लिए खासा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने उसूलों पर अपने तरीके से जी हुई होती है, और जब वो बच्चों के बीच रहता है तो बहुत कुछ उसको नागवार गुजरता है, उसको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और फिर बच्चे ये समझते हैं कि बुजुर्ग अपनी बात उन पर थोप रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति को किस तरह
0: जी
1: से टैकल करे एक बुजुर्ग?
0: असीम जी, सबसे पहले तो हमें जो है ये देखना चाहिए कि हमारे जो है बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप है, और आजकल के बच्चे जो हैं वो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, वो हमारी दुनिया नहीं थी। हमारे आपके टाइम में जो संवाद हुआ करते थे, पत्र लिखे जाते थे, सब चीज़ें जो है आमने सामने मिलते थे, बैठते थे,
1: बातें होती थी।
0: चौपालें होती थी, तो अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई होंगी। तो उस चीज़ उसके लिहाज से हम लोगों को थोड़ा सा जो है ये एडजस्ट करना चाहिए कि भाई जो है हम बच्चों को अपने विचार ना थोपें, तो थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। लेकिन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि
1: जी
0: इन इस परिवार ने, इस व्यक्ति ने मेरे लिए सारी ज़िंदगी एक जो है होम कर दी।
1: बिल्कुल
0: दूसरी बात यह है कि इसका समर्पण, इसका त्याग, इसकी मेहनत, इसका जो है इसने हमेशा मेरा जो है हर चीज़ में मेरा सुख दुख देखा।
1: जिसने आधी उम्र से
0: जी
1: ज्यादा
0: जी
1: जिन
0: जी
1: उसूलों के
0: जी
1: साथ तय की, उसके लिए खुद को बदल पाना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर
0: हाँ,
1: है।
0: थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, यही बात है कि, और जो अगर बाप बदल सकते हैं तो आप जो है खुशहाल रहेंगे। मैं भी जो है बुजुर्ग हूँ और परिवार का मुखिया भी हूँ, तो मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो मेरी छोटी एक पोती है, तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास भाग के आती है, मेरी आधी थकान उतर जाती है।
1: क्या बात है।
0: फिर वो बच्चे वो चोटली आवाज मुझसे बात करेगी, मुझे बाबा पूछेगी, बाबा आप क्या लाए, तो मैं उसको चीज दूंगा। कभी मैं हंसी में उससे कह देता हूँ कि बेटा जो है तुम्हारी चीज मुझे ध्यान नहीं रही बाबा,
1: मतलब
0: नहीं
1: जो है उनमें खुशियां तलाशनी होंगी, ढूंढनी होंगी।
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, एक चिकित्सक भी हैं आप, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, अपने आयु वर्ग के और साथियों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से खुद को फिट रखें, किस तरह से मानसिक रूप से फिट रहें, किस तरह से जिंदा दिल रहें?
0: असीम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने विचारों बच्चों पर मत थोपो। बच्चे अपने अपनी ज़िंदगी अगर जी रहे हैं तो उसमें ज़्यादा दखलंदाजी आप अगर करेंगे तो आपका परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस समय आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग जो है वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। अब जिन माँ बाप ने सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए समर्पित की और जिस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों की सहारे की है, क्योंकि इस उम्र में आंखें कम कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है,
1: चला फिरा नहीं
0: तरह
1: जाता
0: से
1: है।
0: जाता, तरह तरह की बीमारियां आदमी को घेर लेती हैं, उस समय बच्चों को सब ये देखना चाहिए कि हमारे माता मेरा कुछ माता पिता के लिए मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो है हम अपने बुज़ुर्गों पर ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है, क्लब्स खोले हैं, अस्पतालों में जो है उनको एक स्पेशल और उनकी अलग लाइन बनाई है, ट्रेन में भी उनको जो है कहीं कंसेशन दिया जाता है, उनको काफ़ी सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन परिवार का जो है
1: जो साथ में
0: मरहम
1: लग
0: है
1: जी
0: अगर वो लग जाए बुज़ुर्गों को
1: तो और जीवन
0: तो
1: सरल हो
0: और जीवन
1: जाएगा।
0: सफल हो जाएगा।
1: डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, छांव बरगद की कार्यक्रम में बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई हमें भी, हमारे श्रोताओं को भी, और आपके अनुभव जरूर हम सबके काम आएंगे। कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: छांव बरगद की इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्री प्रमोद कुमार से असीम सक्सेना की बातचीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 7:31 पर आज सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अंकिता के गाए कुछ गीत और भजन। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के गीत रात 8 बजे। कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। रात 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही प्रस्तुति हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कल सुबह 6:05 पर। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर डॉक्टर विनय वर्मा की जानकारी का विषय रहेगा घर में रखें स्वच्छता का ध्यान। संध्या रानी शाक्य के गाए कुछ लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7 बजे। कार्यक्रम होगा लोक रंग। उर्दू कार्यक्रम का वक्त रहेगा सुबह 9:30 पर। इसमें समाप्त फरमाइएगा एक शेरी नशिश्त। शिरकत करेंगे जनाब अब्दुल नईम, जनाब गफ्फार हुसैन और जनाब मुमताज हैदर। प्रोग्राम पेश करेंगी शमामा मसूद। आपका पत्र मिला। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 10 बजे। बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां कल दिन में 1:15 पर। हमारे केंद्र से साहित्यिक पत्रिका आप तक पहुंचेगी रात 9:30 पर। इसमें देश दीपक शर्मा का काव्य पाठ आप सुनेंगे। साथ ही ताकि जीता रहे मेरा हिंदुस्तान इस विषय पर वार्ता होगी हसीन जहरा की और श्रीमती रेणु अग्रवाल की कहानी होगी जिंदगी के रंग। समय याद रखिएगा कल रात 9:30 पर साहित्यिक पत्रिका के अंतर्गत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता, संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
2: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी वानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
3: संवरना कार्यक्रम है। ये 20 दिवसीय 3 दिन का कार्यक्रम है। जो आज का दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना संवरना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
5: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
6: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने आज ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी

से मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 और 14 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अंकिता के गाए कुछ गीत और भजन।

आकाशवाणी रामपुर से सुगम संगीत कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं कुछ गीत और भजन। आज कलाकार हैं डॉक्टर अंकिता।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंकिता से कुछ गीत और भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोता भाई सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आज गीत गाता चल कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना, अपने संदेश हम तक पहुंचाना, तो हमें लिख भेजिए अपने नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर 9410087876। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9410087876। हम इंतज़ार कर रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके संदेशों का। और ये जो सबसे पहला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी जिंदल, पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल बुलबुल और इन्हीं के साथ हैं संजीव बंटी और इनका खुशदिल परिवार। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुँचा है, ये हमारे श्रोता हैं थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से, इरफान खां, शाहिदा परवीन, इमरान, रेहान, इकराम, समीना, आसिफा और शवीना। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारी श्रोता हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं फाजिलका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी खेड़ा, शालनी, टिवांशी, आरवी खेड़ा, जीवन सिंह और इनका समस्त खेड़ा परिवार। कार्यक्रम गीत गाता चल के लिए ये संदेश हम तक पहुंचा है गांव खावरी अब्बल से, चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवन्या, इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुवान, अरजान और अबान अब्बासी। आपने संदेश भेजा है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंद शहर से। ये हमारे श्रोता हैं संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। ये हमारे श्रोता हैं फरदीन और इन्हीं के साथ हैं अबान। आप लिख रहे हैं चौखुंटी बुलंदशहर से। भोपालगढ़ राजस्थान से ये संदेश हम तक पहुंचा है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और इनके परिवार वालों का। अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, इन्हीं के साथ हैं विनोदपुरी। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं नागपुर महाराष्ट्र से, कमल सहानी और पिंकी सहानी, इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप सिंह। रामगढ़ कैंट झारखंड से ये संदेश हम तक पहुंचा है निप्पी साहनी और इन्हीं के साथ हैं सुनीता साहनी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, श्रीमती मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, इन्हीं के साथ हैं रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, लो प्रांजल राय। अगला संदेश हम तक पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सब ने सुनना चाहा है

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता हैं पिपरिया से, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी। अगला संदेश हमें मिला है भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी लोग। ये हमारे श्रोता हैं जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इन्हीं के साथ हैं सुरेश चौरसिया फरुखाबाद से। अगला संदेश हमें मिला है सरोज चौक अमरावती से कमरुला नसीम बेगम, सोएब खान, साइमा खान, पोतरा मुस्तवा खान और इन्हीं के साथ हैं आफिया खान, शाहिद भाई और राहुल भाई। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं मास्टर राधे श्याम शाक्य कासगंज से, अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। करमवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश ये हम तक पहुँचा है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, सुजाता पोहरकार और इनके परिवार वाले। ये हमारे श्रोता हैं वेणी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गात्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबासेरे। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय और प्रीति राय के साथ हैं नवनीत राय। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज और इनके परिवार के सभी लोग। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी और इनके परिवार वाले।

ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के। अगला संदेश हमें मिला है अंबेडकर चौक बाकोड़ी से, उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े और इनके परिवार वाले। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमाक्ष और इनके परिवार वाले। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं पंजूसराय संभल से, छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सैयद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र धोडीवा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम और इन्हीं के साथ हैं नामदेव राव शिंदे पाटिल। ये हमारे श्रोता हैं अशोक नगर हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली, राजू, पार्वती, सखाराम और रोहित, सोनू, मोनू और इनके परिवार के सभी साथी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है तामसा रोड तहसील हंदगांव, श्यामराव पंडेरी, बेबी बिट्टू पंडियड़े और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में ये गीत। संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने और गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने। फिल्म का नाम है दुनियादारी।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। यदि आपने देर से ट्यून किया है तो हम आपको बता दें कि किस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना संदेश, अपने नाम हम तक पहुंचाने हैं, यह सब संदेश भेजना है और एक ही बार भेजना है, क्योंकि अगर आप बार बार भेजेंगे तो जैसे ही आपके संदेश का नंबर आने वाला होता है और आप फिर से नया संदेश टाइप करके भेज देते हैं तो फिर वो संदेश सबसे ऊपर चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये अगले जो हमारे श्रोता हैं, ये हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। ये संदेश हम तक पहुंचा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम कालेगांव जाफराबाद से, सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वदा, सानवी और इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया, शनि चौक खंडवा से, पिंकी, शिंकी और इन्हीं के साथ है रिंकी, जेल रोड रायगढ़ से लाल चंद्र मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्व

विश्वकर्मा, सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं सिंधोली मीरगंज बरेली से, जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, इन्हीं के साथ हैं करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके परिवार के सभी लोग। ये हमारे श्रोता हैं रवि रेजिडेंसी राजकोट से, हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, बीरम गाम सिटी से अजीता मेहरा और इन्हीं के साथ हैं सुनीता मेहरा, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरा, विजय और अनुश्री डिंगरा। ये हमारे श्रोता हैं बिलाईगढ़ से देव डूकर, तुषार और अजय देव डूकर। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव, साइना और निवान शर्मा। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, गंगाधर ये मेकर, प्रमोद ये मेकर, प्रदीप ये मेकर और इनके परिवार के सभी लोग। रायगढ़ से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा आपके साथ में। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन और उमा डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, उपरवा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें संदेश भेज रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमनाज अंसारी और शबनम बानो। इन्हीं के साथ हैं जेल रोड बक्सर से राज, एसडी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीवा भी हमें संदेश भेज रही हैं। ये हमारे श्रोता हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से, बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सरांश, शयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत फिल्म नव रंग से। स्वर महेंद्र कपूर और आशा भोसले का है, संगीत दिया है सी रामचंद्र ने और गीत को लिखा है भरत व्यास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत रिफाक्त और इन्हीं के साथ हैं नुजत जहानाज, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। ये हमारे श्रोता हैं महसूल सीतामणि से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। अगला संदेश हम तक पहुंचा है बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया के साथ हैं गोरैया जालंधर से अशोक जाटव। ये हमारे श्रोता हैं बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है सरगुजा मेनपाट से विनोद थापा, पूजा रानी और विजय थापा। छत्तीसगढ़ से जानवी, डोमिन, यामीन और रोहित, हरिशंकर बेलदार और प्रभा रानी बेलदार हमें संदेश भेज रही हैं डोंडी लोहारा से। जेल रोड रायगढ़ से उमाराज और जगदीश सिंह। ये संदेश हमें मिला है लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका शर्मा जी का। अगला संदेश हमें मिला है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी का। ये हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभैये। इन्हीं के साथ हैं भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, हबीब अहमद और इन्हीं के साथ हैं इरफान खान। राजद्वारा कोठी अफसराला से रूमा खान, बोबी खान, मदिहा खान, सुबहान खान, शबनम अब्बासी, गुलफसा, जीनत अमान और शमा परवीन। ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद ईशाक।

और खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कोसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी लोग, ये हमारे श्रोता हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले और गौतम इंगोले। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर और इनके परिवार के सभी लोग, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है सरगुजा मेनपाट से प्रभा और प्रेमिला जी का। इन्हीं के साथ हैं तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार और मिश्री देवी साहू। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं आसाम से हितेंद्र दास और इनके परिवार के सभी लोग। मेन रोड तेलहारा से सुजाता पोहरकार हमें संदेश भेज रही हैं, ये हमारे श्रोता हैं अमरावती से शाहिद भाई और इन्हीं के साथ हैं आसिफा परवीन, मोहम्मद सैफ, सादाब फातिमा और अल्फिया, मोहम्मद सुफियान और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बड़ोदे और इनके परिवार के सभी लोग, मीनाक्षी, रजनी और बाबा साहब बड़ोदे, चरुण वरुण महाराष्ट्र से हमें संदेश भेज रहे हैं। सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सरिता सुजाता, सुबोध सलोनी, संजू, पूजा, पिंकी, बाबू, शिवा, शिवानी चौरसिया हमें संदेश भेज रहे हैं फरुखाबाद सावगंज चौराहा यूपी से। ये हमारे श्रोता हैं बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान, इन्हीं के साथ हैं दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन और समीर मलिक। आप सबको सुनवाते हैं ये गीत देवर फिल्म से, स्वर मुकेश का है, संगीत रोशन और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने के लिए हमारे पास संदेश पहुंचे हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार, ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, सुनील कुमार और इनके परिवार के सभी लोग।

गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और इनके परिवार के सभी लोग, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार वाले। ये संदेश हमें मिला है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फरोजा मुस्कान और अफसर अली के साथ हैं नगमा नाज मंसूरी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है इरशाद आज़मी, अरवाज अहमद, अबूजर अहमद, अफसा बानू, अनम बानू, अल्फिया बानू और इन्हीं के साथ हैं अमीना इरशाद, सोवरिया पोस्ट कोटिला डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी लोग। मोहल्ला हलवयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया साजारानी और हिना कोसर। ये संदेश हमें मिला है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमत खत्री और अल्तमश खत्री के साथ रमेश गौड़। अगला संदेश हमें मिला है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश रावले पाटिल, शीतल राजेश, राशि राजेश और राजदीप राजेश जी का। ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी लोग। और आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत ठोकर फिल्म में मुकेश का स्वर है, आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों

0: चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. From Minister Narendra Modi to launch

धोंडो पंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा

0: नॉन फिल्मी गाना बन रहा था, उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुना है। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज

0: भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी सौ सौ रंग।
1: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
2: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
2: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
2: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
3: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है, और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
2: इस दास्तां का सबसे

0: सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
1: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
2: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई, गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
3: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
3: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
5: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, 1-2 स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी 2 अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा

0: मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है। हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है। मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में

कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैली ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाए।

0: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
0: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
2: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पलों का इंतज़ार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई

0: आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Katchi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML.